रहे हैं, तो फिर आप देखा जाए तो एक रिश्ते के लिए रेडी ही नहीं है। और अगर आप किसी के लिए ऐसी फैसिलिटी बने हुए हैं तो जरा सोचिए। और सुनते रहिए सदाक्षी के साथ इट हैपेंस, रेडियो प्रिंस 1701 AM पर। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें। मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस को सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और बहुत सारी बातें जो हैं वो इस पल की, इस मॉर्निंग की आपके साथ हो रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं जिंदगी की बात करने जा रही हूँ, जो हम सबकी जिंदगी का बहुत ही आम टॉपिक बन गया है। जी हाँ, और ये है ओवर थिंकिंग। आई नो आपको या आपके घर में किसी ना किसी को तो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी। तो भाई ये ओवर थिंकिंग जो है वो देखिए एक दिन में आई हुई चीज तो होती नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे अंदर बस सी जाती है। थोड़ा सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर सोचते चले जाते हैं। हर डर, हर शक, हर अधूरी बात ओवरथिंकिंग की वजह बन जाती है। इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए भी आप एकदम से कुछ नहीं कर सकते, कोई एकदम से जड़ी बूटी आपको नहीं मिल सकती। धीरे धीरे इससे बाहर निकलने के लिए आपको कदम बढ़ाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ओवरथिंकिंग छोड़ना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए कि क्यों आप इतना सोचते हैं, क्या डर है, क्या इनसिक्योरिटी है, या बस एक आदत बन गई है हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने की, है ना। और जैसे ही आप इस सवाल को समझेंगे, इस पर एक बार सोचेंगे, तो देखिए आपके दिमाग में सबसे पहली कौन सी बात आती है। फिलहाल आप ओवरथिंकिंग से निकलने का ये पहला स्टेप ट्राई कीजिए और मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ, आप सुनते रहिए इट हैपेंस।

जी आपके ब्रेकफास्ट वाले शो इट हैपेंस को इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। यू नो हम सब ये चाहते हैं कि हमारे इमोशंस कोई पढ़ने वाला हो, लेकिन जब बात आती है दूसरे के इमोशंस को पढ़ने की तो हम अक्सर चूक जाते हैं। अब देखिए ना, रिश्तों में सिर्फ आपके वर्ड्स काम नहीं करते हैं, रिश्तों में आपके एहसास, आपके इमोशंस बहुत काम करते हैं और उन्हीं के साथ रिश्ते आगे बढ़ते हैं। हर इंसान अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं कह पाता, लेकिन उसका दिल बहुत कुछ कहता है और असली समझ भी वहीं से शुरू होती है जहां बोलने से ज्यादा महसूस करना सीखते हैं। कई बार सामने वाला चुप रहता है, कम बोलता है या पहले जैसा खुश नहीं दिखता। ये चुप्पी उसकी खाली नहीं होती, इसके पीछे थकान, परेशानी या फिर कोई इंटरनल पेन हो सकता है उसको। ऐसे समय में आपका उसके साथ होना, उसका हाथ थाम लेना और बस ये इतना कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीन मानिए बहुत सुकून देता है और आप का रिश्ता जो है, उसका बॉन्ड जो है, वो इस एक सेंटेंस से बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो बहुत जरूरी है रिश्तों की वैल्यू को समझना, उनके एहसासों और उनके इमोशंस को समझना, राइट। आइए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ इसी बात पर, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वेलकम बैक इट हैपेंस में इस गाने के इस पार एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है। रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर आप एंजॉय कर रहे हैं मेरा साथ और मेरे साथ कुछ बहुत ही प्यारी और बेहतरीन बातें जो इस सुबह को इस मॉर्निंग को आपके लिए बना रही हैं और भी खास। जैसे आज के रिश्तों की बात करूं दोस्तों आपसे, तो आज सबसे ज्यादा जो एक कॉमन वर्ड है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वो है यार बिजी हूं। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो सामने वाले को चुप भी करा देता है और खुद को सही भी ठहरा देता है। इसे सुनकर इंसान आपसे कोई सवाल नहीं करता क्योंकि उसे सिखाया गया है कि समझदार वही है जो बिना पूछे समझ जाए। लेकिन सच ये भी है कि बिजी हूँ अक्सर काम की मजबूरी नहीं होती बल्कि प्रेफरेंस की, इम्पोर्टेंस की कमी होती है। जी हाँ, किसी की जिंदगी में हर दिन बिजी होता है। काम, जिम्मेदारियां, थकान सबके पास होती हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि जो इंसान आपको सच कहता है वो बिजी होने के बावजूद आपको महसूस कराता है कि आप जरूरी हैं, और जो नहीं चाहता वो खाली होकर भी दूर रहता है। और धीरे धीरे आपको भी ये फील होने लगता है कि यार ये बंदा जो है ये मुझे जो है चीट कर रहा है या मुझे परेशान कर रहा है या ये मुझसे बात नहीं करना चाहता है ना। हाँ, तो बिजी हूँ ये सेंटेंस जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो सामने वाले की प्रेफरेंस को बता देता है। क्योंकि आप कितना भी बिजी हैं, आप किसी को लंच करते करते भी एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, नहीं तो बिजी हूँ ये कहना 24 घंटों के वक्त में, ये हमारी जो सुनने वाले लोग हैं और कुछ नहीं रिएक्ट करते हैं इस बात पे, ये जो कहते हैं वो भी समझ लें कि भाई इससे बड़ा मुझे लगता है कोई बेवकूफी भरा वर्ड नहीं है रिश्तों में कहने के लिए कि भाई आपको एक मैसेज करने का भी वक्त नहीं मिला, आप इतने बिजी हैं। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रैक एंजॉय कीजिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर हो रही हैं आपके साथ इस सफर इट हैपेंस में ढेर सारी हमारी और आपकी खास बातें। वैसे देखा जाए तो इट हैपेंस ये जो साथ है हमारा, ये हमारी सुबह को इंटरेस्टिंग तो बनाता ही है भाई, साथ हम और आप होते हैं, इतने बढ़िया गाने सुनते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा ये वक्त जो है ये भी खास बन जाता है हमारे लिए। हम और आप जब साथ होते हैं, जब साथ चलते हैं, तो पता चलता है कि यार सब साथ में सुबह का आगाज कर रहे हैं और हर किसी की बस एक ही विषय है कि मेरी ये सुबह बेहतरीन हो, है ना। और जब आप एक पॉजिटिव वे में ये सोचना शुरू करते हैं कि यार सच में सताक्षी ये सुबह बेहतरीन हो तो कितना अच्छा हो, तो बस अपने आप ही दिन जो है वो आपके फेवर में बनना शुरू हो जाता है। जैसी सोच वैसी जिंदगी, और जैसी जिंदगी वैसी आपकी सोच, और जैसी जिंदगी आप चाहते हैं वैसा सोचना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक मेरे साथ, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

वेलकम बैक इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। भाई देखिए, सुबह बहुत सारी रिश्तों की बातें हो रही हैं, प्यार की बात हो रही है ना, बिजी होने की बात भी हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं भाई। तो मैं ये कह रही थी कि इन सबके बीच में इतना बिजी मत हो जाइएगा कि आप अपनी एक्सरसाइज और अपना जो सेल्फ लव वाला टाइम है, जो मी टाइम है, आप उसे खो दें, है ना। क्योंकि लाइफ में हमारा हर एक दिन देखिए बहुत सारे रूटीन से भरा होता है, लेकिन उन रूटीन्स के बीच में भी खुद के लिए वक्त निकाल लेना, खुद को प्रेफरेंस देना या खुद पर ध्यान देना, ये कभी गलत नहीं होता है। तो ख्याल रखिए अपना, और इस मॉर्निंग रूटीन में जो आपके रिचुअल्स, मॉर्निंग रिचुअल्स शामिल हैं, आपका मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, जो भी आप करते हैं, या भाई मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि हर दिन कुछ अलग होना चाहिए ताकि आपका हर दिन खूबसूरत हो, है ना। चलिए फिलहाल इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और इन्जॉय करते रहिए। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्फानी 1701 AM।

ये था इट हैपेंस पर सताक्षी के साथ आपका आज एक और साथ। आई रियली होप कि आपने आज के साथ को भी जरूर एंजॉय किया होगा और आपको जरूर मजा आया होगा। तो कल कुछ और किस्सों के साथ और हमारी आपकी बातों के साथ कल फिर होगी हमारी और आपकी एक और मुलाकात। आज के इस इट हैपेंस के सफर से अब सताक्षी कहेगी आपसे जी हाँ नमस्कार, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: वेलकम आदाब जी, सत श्री अकाल जी। आज तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते जी आर 6 संदेश शलक दे नाल सिमान चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल इन्हां गल्लां नूं असीं पंजाबी गीतां दा तड़का हमेशा दी तरह जरूर लगाउणा है। तां इस शब्द विच तुसीं की करना है, तुसीं बस जुड़ना है साडे नाल, वड़वड़ दे नाल जुड़ना शुरू करो। रेडियो बिस्वानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, ते bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आईडी है, जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसीं ओह अपना सकदे हो। पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर करते रहा करो, है ना। तां फटाफट दे नाल तुसीं चक्को अपना फोन ते जुड़ो साडे नाल। मैं हुणे वापस आउंदी हां, उहनां समां इह सोहणे जी गीतां नूं इंजॉय जरूर करो।
1: मर्सी

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.01 FM ते जीआरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो अज दे दौर विच ना हर किसी नूं ओटीटी प्लेटफॉर्म ते फिल्मां ते सीरीज देखना काफी ज्यादा पसंद आंदा है। दरअसल ना ओटीटी दे लोग सब तो ज्यादा सीरीज देखना पसंद करते ने। इस दी सब तो वड्डी वजह यह भी हैगी है कि दर्शकों एक ही प्लेटफॉर्म से कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जे तुसी भी ओटीटी ते निधि ने कुछ वधिया कॉन्टेंट लभ रहे हैगे हो तो अज मैं कुछ शानदार सीरीज बारे तुहानू दसन जा रही हैगी है जो अपनी वॉच लिस्ट विच शामिल जरूर कर दिओ क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खास है। इन्निया कुछ ज्यादा खास ने जो दर्शकों अपना दीवाना बना चुकिया है ते केड़े केड़े प्लेटफॉर्म से हैगी है की हैगियां ने दस दी उन्हां बारे एक एक करके। पर पीला एक गीत सुन लो।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते जी आरचे संदेश शलक दिनाल से बने हुए। हुण मैं जेड़ी सीरीज बारे सब तो पहला दसनी है की है ओ नु तुसी देख लोगे ना जो सीरीज नु ता तुसी ना एक बहुत ही फेमस हुई है सीरीज असुर जिदी हमेशा गल चलती है तुसी असुर नु भी भूल जाओगे इन्नी ज्यादा सोहनी है ते उसका नाम पता की है उसका नाम है दहाड़ जी हाल इस दिविच पहला नाम ही दहाड़ ता है ते इस सीरीज दिविच सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल दिविच है कि 2023 विच रिलीज हुई सी है सीरीज। ए सीरीज अमेज़न प्राइम वीडियो ते है कि है उते जाके तुसी देख सकते हो। इस दे हर एक एपिसोड विच तुहानू शानदार एक्शन देखण नू मिलूगा, बहुत ज्यादा सोहनी हैगी है। इस विच उहनां दे नाल मतलब सोनाक्षी सिन्हा दे नाल विजय वर्मा भी है ते गुलशन देवैया भी है। ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगी, जे तुसी नहीं देखिया तां इन्ना जरूर कहूंगी कि जिहड़ा एक्टर तुहानूं हर जगह हीरो हीरो हीरो हीरो नजर आउंदा उही कुछ अजिहा कर जांदा है कि तुसी सोच ही पै जाओगे। ते सोनाक्षी सिन्हा दी बहादुरी तां काबिल-ए-तारीफ है, एक्टिंग बहुत ज्यादा शानदार कीती है, तुसी देखियो जरूर एक बार।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो जे थानू पाताल लोक देखनी बहुत ज्यादा वधिया लगती है तो यह लिस्ट विच पाताल लोक ही है दूजे नंबर ते। जे तुसी देखे हो या पाताल लोक दे दोनों सीजन क्योंकि बहुत वधिया है ते जे तुसी जयदीप अलावत दे फैन हैगे हो तो पाताल लोक तो बेस्ट ही है ना। देखो ए सीरीज ना लोगों को खूब पसंद आई है। इस सीरीज विच थानू जबरदस्त थ्रिलर ते सस्पेंस दोनों चीजा देखने को मिलेंगी। जेकर थानू सस्पेंस वाली सीरीज पसंद है ने तो तुसी इस नू अपनी वॉच लिस्ट विच शामिल कर लो। ए सीरीज प्राइम वीडियो ते देखी जा सकती है। जयदीप अलावत की जिम्मे पहला गल की ना तुसी जयदीप अलावत के फैन हो ना तो ए जबरा फैन बना दूगी इस सीरीज थानू उन्हां दा।
1: Show mercy on it.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, jise janna acha hai. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसोनी 101.1 ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए। बहुत होगी बॉलीवुड की गल, थोड़ी हॉलीवुड वाल भी नजर मार लेने जी। हाँ, क्योंकि जी मैं हमेशा कहनी हुनी है ना कि मैं सिर्फ बॉलीवुड बारे नहीं पूरी दुनिया बारे गल करनी हैगी है। तो जेड़ा तीसरे नंबर ते जेड़ी सीरीज में गल कर रही हूँ वो बाहर की ही हैगी है, इंडियन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाम है जी उसका ब्रिज सीजन 1। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਜ਼ਨ 1।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक ना सीरीज है कि उस दे विच पंकज त्रिपाठी भी है, उस दे विच की कहंदे हुंदे आ अली फजल भी है, विजय वर्मा दा एड्डा वड्डा रोल नहीं है ते पर है, रसिका दुग्गल भी है, श्वेता त्रिपाठी भी है, बड़ी वधिया सीरीज है। आई थिंक तुसीं गैस कर लिया होना क्योंकि वो सीरीज है मिर्ज़ापुर इस विच शामिल है। डार्क एक्शन है इस विच ते सस्पेंस है। पंकज त्रिपाठी दी सीरीज है मिर्ज़ापुर। इस सीरीज दा हर सीजन लोकां ने ना खूब सराया है, बहुत ज्यादा प्यार मिलिया, हर किरदार नू प्यार मिलिया हैगा है, जो भी हो भी। इस सीरीज नू भी तुसी प्राइम वीडियो ते देख सकते हो, जरूर देखियो, पहले सीजन तो देखना शुरू करियो जो, क्योंकि जे तुसी किसे विचकार किसे सीजन तो देखना शुरू किया था तुहानू समझ ही नहीं आऊगा। इस नू देखना है तो तुहानू फर्स्ट सीजन तो देखना पऊगा।

जी जी आनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सनो वाने हम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हो और अगले नंबर दी जो गल करिए ता उस ते होंदा है जी अफसोस छेवा नंबर आ गया है शायद तुसी ध्यान नहीं दिता पर छेवा नंबर आ गया अफसोस वैब सीरीज विच मौजूद है इस सीरीज विच थोनू कमाल दा थ्रिलर देखन नू मिलूगा ते ए ब्लैक कॉमेडी सीरीज है की है उस बाद दे लास्ट आवर भी है लास्ट आवर भी इस दे शामिल है एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिस विच कमाल दे ट्विस्ट दे टर्न्स देखन नू मिलदे ने जेकर तुहानू इस नू एक बार देखना तुसी शुरू कीता ना तां तुसी पूरा कीते बगैर उठ ही नहीं पाओगे इन्नी वधिया है सीरीज।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331
0: फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर शेनिविया के साथ। थर्सडे का दिन है दोस्तों और धीरे धीरे वीकेंड फिर से आने वाला है। और यू नो व्हाट, मैं हवाओं में वो फील कर पा रही थी, जो सुकून होता है ना वीकेंड का, वो फील कर पा रही थी। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, वैसे अगर वीकेंड थोड़ा लेट भी आता तो चल जाता, क्योंकि हम अभी तीन तीन छुट्टी काट कर आए हैं। और वो तीन छुट्टी काटने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा था कि अगर इस दुनिया में छुट्टियां ही होती, काम होता ही ना, तो क्या होता। वेल हम बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं और हम बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि काम हमें कहीं ना कहीं फिट रखता है। जी हाँ, ऑल्दो आप लोग बोलोगे कि काम, आजकल का काम तो हमें फिट नहीं रखता निवेश शर्मा, घर पे बैठकर काम हो जाता है, ऑफिस में बैठकर पूरा दिन एक ही सीट पर हम बैठकर काम करते हैं, कौन सी फिटनेस दे रहा है वो हमें। वेल, आपकी बात सही है। सो इसीलिए आपको फिट रहने की जरूरत है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने सपनों को तभी पूरा कर पाओगे जब आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी रह पाओगे। सो ये करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत उसी हेल्दी नोट के साथ, क्योंकि मैं यहां पर आपको वही कहने के लिए करने वाली हूं, वही करने के लिए कहने वाली हूं जो कि बहुत ही खास है, और वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। नाउ दिस एक्सरसाइज एंड दिस रिचुअल इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम की शुरुआत का ये एक बहुत ही मेन मोटिव रहता है कि आपको थोड़ा सा सुकून जो है वो हम फील करवा पाए। अगर आप कितनी भी जद्दोजहद में लगे हों, थोड़ी सी लंबी गहरी सांस के साथ आपको वो सुकून पहुंच पाए जो कि आप डिजर्व करते हो। तो आइए करते हैं शुरुआत। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी को मिल नहीं भी रही है ना उतनी अच्छे से, तो आप करते हो तो बहुत ही अच्छे से आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी चीजों का इलाज है योग में। इसे इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं कहा गया है क्योंकि सच में बहुत ही अच्छे से काम करता है। सो डीप ब्रेथ एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए जिंदगी में सुधार। चलिए इसी के साथ आइए आपके दिन का भी सुधार कर देते हैं, क्योंकि अच्छे बढ़िया गाने जब प्ले होंगे तो आप कैसे स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। जी हाँ, तो सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो थोड़ा ठुमके वाला है। अगर आपका डांस करने का मन करता है तो कर सकते हैं, इनकेस आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप नहीं कर सकते तो मत कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत ठुमका लगाने में क्या ही दिक्कत है।

मौसम कैसी अंगड़ाई ले रहा है मौसम, आइए जानते हैं। सबसे पहले 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, अभी की अगर बात की जाए तो 25.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको हो रहा है 22.8 डिग्री सेल्सियस के करीब। 17 डिग्री सेल्सियस रात में आप देख पाएंगे तापमान में गिरावट, और बारिश के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कुछ बारिश वाले दिन रहे उसके बाद आपको अगेन निजात मिल गया है बारिश से, लेकिन अभी 4-5 दिन बारिश बिल्कुल नहीं आएगी, बट फिर से वापस आएगी। जी हाँ, 4-5 दिन आपको सुकून से बिताने को मिलेंगे इन केस यू डोंट लाइक रेन, और अगर आप पसंद करते हैं बारिश तो 4-5 दिन और इंतजार कीजिए क्योंकि फिर से बारिश दस्तक देने वाली है। तो चलिए, ये तो आज की बात हुई। अगर कल की बात की जाए यानी कि फ्राइडे की बात की जाए तो मोस्टली सनी रहेगी सिचुएशन, 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर। वहीं सैटरडे को मोस्टली सनी रहेगा एंड 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो बना रहेगा। आज की अगर एक क्वालिटी की बात की जाए तो एक क्वालिटी है एकदम मजेदार, और ये है मौसम का हाल जो कि बिल्कुल भी नहीं है बेहाल। ऑल्दो ठंडक जो है वो बढ़ रही है, और आपको पता ही है हम किस और बढ़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। सो ठंड को आपको वेलकम करना है, और बहुत ही अच्छे से वेलकम करना होगा क्योंकि वक्त आ गया है सरसों का साग ते मक्की दी रोटी का, क्योंकि आपको पता ही है ठंड और सरसों का साग और मक्की की रोटी जो है वो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, राइट। सो अगेन, ठंड आती है अपने साथ बहुत ही खूबसूरत चीजें लाती है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए क्योंकि कुछ ही दिनों में वो आप फील कर पाने वाले हो। ऑल्दो उसकी फीलिंग अभी से शुरू हो गई है, बट अच्छे से आप फील कर पाओगे कुछ दिनों में। सो ये है मौसम का हाल, और अब जरा चलते हैं सीधा एक और बहुत ही खास गाने की तरफ।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यार, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, यहाँ पर फरमाइशों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और मैं यहाँ पर इससे पहले कोई फरमाइश प्ले करूँ, आपको बता देना चाहती हूँ कैसे आप लोग अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचा सकते हो। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कैसे आप अपने पसंदीदा गाने, वो चुनिंदा गाने फरमाइश कर सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो हमारे साथ और हमें। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +918 288-7701। आई रिपीट, +918 288-7701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश और हम जल्दी से रेडी हो रहे हैं अपनी फरमाइशों को प्ले करने के लिए। यहां पर उससे पहले हमारी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आशा जी की आवाज में।

जी दोस्तों, इसी के साथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मतलब मैं सोच रही थी इस बारे में, और सोचते सोचते मेरे एल्गोरिदम ने इसके बारे में कुछ दिखाई दिया मुझे। आपको तो पता ही है, एल्गोरिदम मुझे लगता है हमारी जुबान के साथ नहीं, हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट हो गया है, क्योंकि अब हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। सोचते हैं तब भी हमारा फोन हमें वो चीजें दिखाना शुरू कर देता है, एंड यू विल नो हाउ। सो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि AI कैसा फील करता होगा। मतलब पहले AI जो है, इट हेल्प्स अस टू पास आर एग्जाम्स एंड गेट आर डिग्री। जी हाँ, पहले हमें हेल्प करता है हमारे एग्जाम्स पास करने में, हमारी डिग्री लेने में, और फिर उसके बाद हमारी जॉब भी लेने में। मतलब हमें हेल्प कर रहा है डेफिनेटली, मतलब हमें एग्जाम पास करवा रहा है, हमें इतनी सारी चीजें नॉलेज दे रहा है, फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद, डिग्री दिलवाने के बाद, वो हमारी जॉब भी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मैं सोचती हूँ कि AI इज सो चीकी, लाइक लिटरली सो चीकी, कि मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, AI का तो दिमाग ही नहीं है। मैं कहूंगी AI का भी दिमाग है, और बहुत ही खतरनाक दिमाग है, और बहुत ही शातिर दिमाग है। मतलब लिटरली कितना शातिर चीज है, राइट? मतलब ChatGPT या जितने भी बड़े बड़े ये AI प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमें कितने अच्छे से हेल्प करते हैं। यू नो व्हाट, सारी चीजों का आंसर दे देते हैं, हमारे एग्जाम्स पास करवा देते हैं, हमें डिग्री दिलवा देते हैं, और फिर उसके बारे में जॉब भी ले जाते हैं। ओ माय गॉड, AI इज द रियल गेम चेंजर एंड द रियल कल्प्रिट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर हमें बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ आपके लिए, वो मेरी तरफ से नहीं है बल्कि एक फरमाइशी गीत है, और ये फरमाइशी गीत आया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है मुझको अपने गले लगा लो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आई थिंक That is a good thing, right? When you hug someone, आप उनकी आधा स्ट्रेस जो है वो कम कर देते हो। सो ऑफकोर्स गले लगाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गानों के लिए, फरमाइशों के लिए। बिना देर किए हुए आपका ये गाना प्ले करेंगे, और ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे प्रोग्राम को, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: यार नाटक ना कर, नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नचना, भैन दी सगाई च तो भाई नू नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
14: Bigger, better deal.
15: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निव्या के साथ. दोस्तों, ये दुनिया बदल रही है एंड हाउ. जी हाँ, मतलब इस दुनिया में इतने बदलाव हम देख रहे हैं, हर सेक्टर में बदलाव हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सेक्टर है बदलाव वाला वो है टेक्निक का. जी हाँ, टेक्निकल सेक्टर, रोबोट्स, AI, ये इतने धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं कि ह्यूमंस इनके साथ कीप अप कर भी नहीं पा रहे हैं. और ये तो अभी का हाल है, आगे क्या होगा हमें आइडिया भी नहीं है. यहां पर आपको एक और चीज बताते हैं जो कि अभी हुई, बहुत ही लेटेस्ट, और इसके बारे में बात करना जरूरी है. ऐसा ही कुछ जापान में हुआ था कुछ महीने पहले, लेकिन अब ये साउथ कोरिया में भी हुआ है. सो साउथ कोरिया में पहले ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क ने ऑफिशियली डेब्यू कर लिया है. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क. सो मॉन्क है ये, लेकिन ये रोबोट है और ये ह्यूमनॉइड रोबोट है. जी हाँ, वेडनेसडे को, मई 6 को इसने डेब्यू किया जोगे टेम्पल, जो कि सोल में है, अहेड ऑफ बुद्धास बर्थडे. जी हाँ, बुद्धा का बर्थडे आ रहा है और उससे पहले जो प्रैक्टिस हो रही थी वहां पर जो पूरा का पूरा रिचुअल चल रहा था उसमें इस AI ह्यूमनॉइड रोबोट ने डेब्यू किया. जी हाँ, और इनफैक्ट इसने बहुत सारे जेस्टर्स भी किए. उसने राउंड एंड राउंड घूमने का काम भी किया. जी हाँ, उसने जब उसको रोजरी पहनाई गई, जी हाँ, वो माला उसके गले में पहनाई गई, तो उसने अपने हाथ जोड़े बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ह्यूमन मॉन्क्स करते हैं. जी हाँ, और उसके बाद उसने सबका दिल जीतने के लिए हाथ का इशारा भी किया. जी हाँ, दोनों हाथों से अपने सर पर उसने दिल का जेस्चर भी बनाया. जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि वाह, ये वाला पार्ट तो ज्यादा ही सही था. मतलब ऑफ कोर्स ह्यूमन मॉन्क्स आपको ये करते हुए नजर नहीं आएंगे, दे आर वेरी ट्रेडिशनल, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमनॉइड एआई रोबोट है तो ये तो डेफिनेटली ये कर रहा है. जी हाँ, अब यहाँ पर इसको देखकर बहुत सारे मॉन्क जो है वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे. लिटिल डिड दे नो कि बहुत टाइम बाद या फिर कुछ टाइम बाद ही ऐसा ना हो कि उनकी जरूरत भी ना पड़े और एआई रोबोट्स ही यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स ही पूरी तरह से उनका भी काम खा जाए. जी हाँ, आई होप ऐसा कभी ना हो. लेकिन यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है, लेकिन क्या ये किसी खतरे का अंदेशा भी है? जी हाँ, अब जब इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे. उसमें एक कमेंट जो है वो बहुत ही फनी था और मुझे लगा मुझे आपके साथ उसे शेयर करना चाहिए. जी हाँ, उसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू फॉर द होली आइडिया, नाउ ह्यूमंस कैन टेक अ बैक सीट एंड वॉच रॉबर्ट्स हैव देयर रिलीजियस फाइट. अभी तक तो इंसान लोग ही अपने रिलीजियस फाइट्स को करते रहते थे, हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, सबका धर्म जो है, हमारा मजहब ऐसा है, you know, हमारा रिलीजन ऐसा है, सबके सब कहते थे. हर एक रिलीजन जो है उसमें कोई ना कोई ऐसा तो मिली जाता था जो ऐसी बातें करता था. सो ऐसे में अब रॉबर्ट्स जो है अब रिलीजन में उतर आए हैं, रॉबर्ट्स जो है अब इस वाली अरीना में उतर आए हैं, तो किसी ने बहुत ही अच्छे से कहा कि अच्छी बात है, अब थोड़ा ह्यूमन जो है थोड़ा बैक सीट ले सकते हैं, इनको लड़ने दो, हम क्या करेंगे, हम थोड़ा चैन से रह लेते हैं. जी हाँ, वेल आई वुड से ग्रेट कॉमेंट. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, और इसी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके बारे में मैंने आपको कुछ वक्त पहले भी बताया था, लेकिन क्योंकि अब वो डेट नजदीक आ गई है, आई वॉन्ट यू टू नो इट अगेन। जी हाँ, सो ध्यान से सुनिए। अगर आप भी इंस्टाग्राम यूजर्स हैं जस्ट लाइक मी, और आप लोग भी मैसेजेस में बात करते हैं अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, या किसी से भी, तो आपको ये जानने की जरूरत है। जी हाँ, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के मैसेजेस यानी कि डायरेक्ट मैसेजेस भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते थे अभी तक, लेकिन कल से यानी कि 8 मई से ये चेंज हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो 8 मई से मेटा यानी कि जो है इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी, वो इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस का एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाला जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर रही है। अब प्राइवेसी जो है वो उतनी नहीं होगी एज कंपेयर टू व्हाट्सएप। जी हाँ, व्हाट्सएप के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आपको पहले ही बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के साथ ऐसा हो रहा है। और इंस्टाग्राम में जो भी डायरेक्ट मैसेजेस जो पहले एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते थे, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो मैसेजेस आप किसी को भेजते थे वो कोई भी नहीं पढ़ पाता था, सिर्फ आप उसे पढ़ पाते थे क्योंकि आप सेंडर थे और रिसीवर ही उसे पढ़ पाता था। इंस्टाग्राम खुद भी उसे नहीं पढ़ पाता था, ना कोई और उसे देख पाता था या पढ़ पाता था। सो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फीचर जो है वो अब इंस्टाग्राम से हट रहा है उसके डायरेक्ट मैसेजेस से। सो आपको कुछ भी ऐसी चीज जो बोलना चाहते हो आप, जो आप चाहते हो कि कोई भी ना पढ़े और आप किसी को नहीं लगने देना चाहते हो पता, इंस्टाग्राम पे बोलने से परहेज कीजिएगा, डायरेक्ट मैसेजेस पे बोलने से, लिखने से और सेंड करने से परहेज कीजिएगा। डू यूज व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप का फीचर अभी भी वैसा ही है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, लेकिन इंस्टाग्राम इसे चेंज कर रहा है, यानी कि मेटा इंस्टाग्राम के लिए इसे चेंज कर रहा है और ये कल से हो रहा है यानी कि 8 मई से। सो या मैं चाहती थी आपको बताना, एंड आई होप आपने इसे ध्यान से सुन लिया हो। और अब से बहुत ज्यादा प्राइवेट मैसेजेस आप परहेज कीजिए इंस्टाग्राम पर बोलने से, लिखने से, सेंड करने से। जो यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें। मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
7: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्जी निविया के साथ। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में काम करने वाला है। इन केस आपको शादी में इंटरेस्ट नहीं है और आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके रिश्तेदार या कोई आजू बाजू वाला या फिर कोई बहुत ही बुजुर्ग आदमी आपकी फैमिली में कोई अगर आपको ऐसा कहता है तो उनसे कैसे निपटना है, क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। सो अगर आप भी उस एज में हो जहां पर सब लोग आपको यही कह रहे हैं कि शादी कर लो, उम्र होती जा रही है, उम्र निकलती जा रही है तुम्हारी, तो उनको आपने यही चीज कहनी है। सबसे पहले जब वो आपसे बोलेंगे यू आर गेटिंग ओल्ड, यू शुड गेट मैरिड, जी हाँ, तो आपको सामने से बोलना है कि विल मैरिज स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग ओल्ड। मतलब ऐसा तो है नहीं कि शादी के बाद मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, शादी के बाद जो है मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी। सो मतलब क्या मतलब है इस चीज का कि बूढ़े हो रहे हो, उम्र बढ़ रही है, शादी कर लो। और ये पता है, ये डायलॉग बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऑल्दो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, पर कुछ लोग चुनिंदा इधर उधर कहीं ना कहीं शादी वादी फंक्शन वंक्शन में आपको मिले जाते हैं, जो ऐसा कुछ कहने के लिए एकदम तैयार बैठे होते हैं आपको। जी हाँ, उनको और कोई काम नहीं है, उनको आपकी शादी करानी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी शादी करानी है। सो अगर वो आपको कहेंगे यू आर गेटिंग ओल्ड यू शुड गेट मैरिड, तो आपको सामने से सिर्फ एक ही जवाब देना है, विल मैरिज स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग ओल्ड? या ऑफ कोर्स टेल मी, विल मैरिज स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग ओल्ड? अगेन अगर वो ऐसा नहीं करेगी, अगर मैं उम्र जो है मेरी फिर भी बढ़ती रहेगी शादी के बाद भी, तो फिर शादी करने के लिए क्यों कह रहे हो? जब करनी होगी कर लेंगे, है ना? मतलब ऐसा तो है नहीं कि उम्र बढ़ने से शादी जो है, शादी करने से उम्र नहीं बढ़ेगी। तो फिर सीधी सी बात है, आपको यही बोलना है बस, ठीक है? और आपकी सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन होने वाला है, और क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी इस सवाल को जो है वो झेला है, तो मैं चाहती हूं कि मेरे जो यंग लिसनर्स हैं और अकॉर्डिंग टू उनके रिश्तेदार दूर दूर के, उनकी उम्र बढ़ रही है, शादी नहीं कर रहे आप, तो मैं कहती हूं कि आपको जरा थोड़े से मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं दे ही सकती हूँ, राइट? सो यही आपको बोलना है, और फिर देखिए सामने वाला कैसे चुप हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, और ये गाना बहुत ही खास है। इस गाने का नाम है

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहि

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की ओर, क्योंकि खबरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। बहुत कुछ हो रहा है देश में, विदेश में, और क्या क्या है जो हेडलाइंस है। आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं भारत की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर बदली, ऑपरेशन सिंदूर के एक साल होने पर क्या कहा। जी आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, बहुत ही बड़ी हेडलाइन है ये तो, मतलब पीएम मोदी ने प्रोफाइल पिक्चर बदल दी, ये तो खबर बना दी तुमने। जी हाँ, ये खबर है अपने आप में। तो ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तस्वीर को नई प्रोफाइल पिक्चर बनाया है, साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी है। पीएम मोदी ने लिखा कि एक साल पहले हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्भुत साहस, सटीकता और दृढ़ता दिखाई, और उन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने वाले को करारा जवाब दिया। पूरा देश हमारी सेना के शौर्य को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अटल संकल्प को दिखाया। इसने हमारी सेना की पेशेवर क्षमता, तैयारी और तालमेल की ताकत को भी उजागर किया। साथ ही इसने हमारी सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से मिली ताकत को सामने रखा। पीएम मोदी ने लिखा कि आज एक साल बाद भी आतंकवाद को हराने और उसके तंत्र को खत्म करने के हमारे संकल्प में कोई कमी नहीं आई है। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था।

0: जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात करते हैं युद्ध विराम की और उसके बावजूद हुए हमलों की। जी हाँ, युद्ध विराम के बावजूद इसराइल ने बेरूत पर हमला किया, नेतन्याहू ने क्या कहा? इसराइल ने हिजबुल्ला के साथ सीज फायर पर सहमति जताने के बावजूद बुधवार की शाम बेरूत पर हमला किया है। यह हमला बेरूत शहर के दक्षिणी हिस्से दहिया में हुआ, जहां हिजबुल्ला का ठिकाना है। ऑनलाइन डाली गई तस्वीरों में आग की लपटें और एक क्षतिग्रस्त इमारत नजर आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान में कहा कि उन्होंने खुद इस मामले को मंजूरी दी थी। ये हमला हिजबुल्ला के खास रद्वान फोर्स के एक कमांडर को निशाना बनाने के लिए किया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस यूनिट के सदस्य बैठक कर रहे थे, तभी हमला हुआ। हिजबुल्ला की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसराइल के ज्यादातर हवाई हमले दक्षिण लेबनान में हुए हैं। सेना का कहना है कि वह हिजबुल्ला से जुड़े ठिकानों और उसके सदस्यों को निशाना बना रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले हफ्ते इन हमलों में पूरे देश में 120 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि मंत्रालय हिजबुल्ला के सदस्यों को भी लोगों की गिनती में जोड़ता है। इसी के साथ यहां पर एक बहुत ही खास फरमाइश प्ले करने का वक्त हो गया है। जी हाँ, ये फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम भी बेहद ही खूबसूरत है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। शमी कपूर और साधना की खूबसूरत मूवी का ये गाना रफी साहब की आवाज में। थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइश है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रफी साहब के गाने आप फरमाइश करते हो, थैंक यू सो मच, क्योंकि मौसम और वाइब हमारे प्रोग्राम की बन जाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे प्रोग्राम को, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए।
1: किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों खबरों की बात हो रही है, क्या चल रहा है दुनिया में उसके बारे में आपको बताया जा रहा है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, वॉर फ्रंट पे। अब जरा बात करते हैं ईरान अमेरिका युद्ध की। जी हाँ, यहां पर कहा जा रहा है कि ईरान विचार कर रहा है अमेरिका के प्रस्ताव पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार है ईरान के साथ जल्द ही युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ईरान क्या कह रहा है ये जरा वो जानते हैं। ईरान ने कहा है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों पक्ष जल्द ही समझौते के करीब हो सकते हैं। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने बुधवार को दावा किया कि व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि ईरान के साथ जल्द ही 14 बिंदुओं वाला समझौता हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि हम इस अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी राय पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ साझा करेंगे। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि उनका देश ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने की कोशिश करा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत की है और एक समझौता संभव है। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में ईरान के परमाणु संवर्धन को रोकना, प्रतिबंध हटाना और हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही बहाल करना शामिल है। गौरतलब है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। हालांकि अब बीते कुछ हफ्तों से युद्ध विराम चल रहा है। युद्ध को स्थायी तौर पर रोकने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, लेकिन यहां पर ये सब करते हुए ईरान अभी भी यूएई को निशाना बना रहा है। जी हाँ, डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेट पीपल। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, और इसी के साथ जरा बात कर लेते हैं मिस्टर ट्रंप की, क्योंकि उनके बिना हमारा न्यूज वाला सेशन और साथ में हमारा रोस्टिंग सेशन सब अधूरा है, राइट? मतलब इसके लिए हमें उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। आइए न्यूज वाले की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार शाम को कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होगा। उन्होंने कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने जॉर्जिया के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बर्ट जॉन्स के समर्थन में एक कार्यक्रम में कहा कि जब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है तो समझेंगे कि हम एक बहुत अहम वजह से ये कर रहे हैं। हम उन्हें परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम सही कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी खत्म होगा। CNN के मुताबिक ईरान गुरुवार को मध्यस्थों को अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि हम इस अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी राय पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ साझा करेंगे। तो चलिए, ये तो होगी पॉलिटिकल वाली बात। अब जाते हैं जरा रोस्टिंग सेशन की तरफ। अभी ट्रंप की धर्मपत्नी द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेलेनिया ट्रंप पोडियम पे खड़ी थी। वो अपने पति के बारे में बात कर रही थी, माय हस्बैंड। जी हाँ, माय हस्बैंड। मुझे नहीं पता कि वो ये बोलते हुए गुरूर फील करती है, गर्व फील करती है, या शर्म फील करती है, या स्टुपिड फील करती है। उनको लगता है कहाँ फंस गई यार। जी हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स ट्रंप वी आर टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, सो मेलेनिया ट्रंप बहुत ही अच्छे से बोलती है, यू नो एवरीवन नोज माय हस्बैंड एज अ यू नो ग्रेट कमांडर इन चीफ, बट यू नो व्हाट, मी, आई एंड मेनी अदर पीपल नोज हिम एज अ एम्पथेटिक पर्सन। जी हाँ, अब ऑफकोर्स इसमें थोड़े शब्दों का फेरबदल हो सकता है, पर उनके कहने का मतलब यही था। मतलब वो कहने की कोशिश कर रही थी कि ओके, सब जो है मेरे पति को जानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े कमांडर इन चीफ हैं। अगेन, कमांडर इन चीफ इसलिए क्योंकि उन्होंने आते ही ईरान के साथ वॉर जो है वो शुरू कर दी है। और अच्छा काम तो क्या करेंगे, पहले टैरिफ वॉर, अब रियल वॉर, अब पता नहीं कौन सी वॉर करने वाले हैं। बट यहां पर मेलेनिया ट्रंप जो है वो नॉर्मल, बिल्कुल सीरियस आंखों के साथ और सीरियस शब्दों में और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ ये बोल रही थी, तभी जब वो बोलती हैं कि बट मी एंड मेनी अदर पीपल नोज हिम फॉर हिज एम्पथी। और जब ये बोलने वाली थी वो, तो वो पढ़ रही थी अपनी स्पीच को, और मुझे लगता है कि इससे पहले उन्होंने अपनी स्पीच को नहीं पढ़ा था, मतलब देयर वॉज नो रिहर्सल, क्योंकि जिस हिसाब से उनको खुद को हंसी आ रही थी ये बोलते हुए। जी हाँ, पहले वाला पार्ट में वो बिल्कुल सीरियस थी, जहां पे बोल रही थी कि सब मेरे पति को जानते हैं कि वो बहुत ही बड़े कमांडर इन चीफ, ग्रेट कमांडर इन चीफ है, लेकिन मैं और बहुत सारे और लोग ये भी जानते हैं कि उनकी एम्पथी। जी हाँ, और जब वो पढ़ने वाली होती है, पढ़ रही होती है उसको, तो उनके शक्ल पे, उनकी आंखों में हंसी के जो एक्सप्रेशन दिखते हैं, मतलब उनकी बीवी, वो औरत खुद बिलीव नहीं करती कि मेरा पति, अरे अरे मेरे पति के बारे में बात हो रही है, अरे यू कांट बी किडिंग मी। जी हाँ, सो मेलेनिया ट्रंप को खुद विश्वास नहीं हो रहा था जिन शब्दों पर, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखती है, और डोनाल्ड ट्रंप उनको वैसा बड़ा ही चीकी सा जेस्चर और एक्सप्रेशन दिखाता कि या माय लेडी, या यू आर राइट, या आई डोंट नो। बट आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है, बट जरूर देखिए, क्योंकि आपको हंसने के लिए कोई तो थेरेपी चाहिए। यू नो व्हाट, टेक इट, ये वाली थेरेपी यूज कीजिए। जी हाँ, मतलब मेलेनिया ट्रंप हंस रही थी वो बोलते हुए कि ओहो हो, किसने लिखा है ये, कौन है ये एकदम चिपकू इंसान, कौन है ये जो पूरी मलाई यहां पर लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप इतना खुश हो रहा है कि यू नो व्हाट, या शी इज टॉकिंग अबाउट मी, शी इज टॉकिंग अबाउट मी एंड द पीपल देयर। ऑफकोर्स वो तो खुद सोच रहे होंगे, मेलेनिया ट्रंप यार, मतलब क्या है यार, कुछ और काम कर लो, ये सब बोलने वाला क्या, ये सब क्या बोल रही हो तुम, रहने दो। जी हाँ, सो ऑफकोर्स मेलेनिया ट्रंप खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी, खुद ही हंस पड़ी। जी हाँ, ऑफकोर्स हम तो हंसते ही हैं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बात कर लेते हैं हांटा वायरस के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल भी कही थी. कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे ये वायरस जो है वो अर्जेंटीना से शुरू हुआ. ऑफकोर्स सबसे पहले ये जब पाया गया था वो साउथ कोरिया में पाया गया था, लेकिन अब इस बार ये अर्जेंटीना से शुरू हुआ है. अर्जेंटीना से एक क्रूज शिप निकली और उस क्रूज शिप में एक कपल की वजह से जो है वो बाकी. कल भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे ये वायरस जो है वो अर्जेंटीना से शुरू हुआ. ऑफकोर्स सबसे पहले ये जब पाया गया था वो साउथ कोरिया में पाया गया था, लेकिन अब इस बार ये अर्जेंटीना से शुरू हुआ है. अर्जेंटीना से एक क्रूज शिप निकली और उस क्रूज शिप में एक कपल की वजह से जो है वो बाकी सारे लोग वहां पर

एक और केस जो है वो बढ़ गया है और ये WHO की तरफ से कहा गया है. WHO की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम इतना कह सकते हैं कि इट्स नॉट लाइक कोविड, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, इसके लिए वैक्सीन कोई नहीं है. सो ऑफकोर्स इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जस्ट लाइक कोविड को ठीक करने की कोशिश की जाती थी. मतलब कोई इलाज नहीं था, बस वैक्सीन थी और वैक्सीन के साथ साथ कुछ जो चीजें करने की कोशिश जो है वो की जाती थी, वही हुआ है. जी हाँ, कुछ लोगों को जो है वो नीदरलैंड्स के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, लेकिन उसके बाद अगेन कुछ लोग जो कि पैसेंजर्स जो है वो उतर गए थे पहले ही, उनके बारे में अभी तक पता नहीं है क्योंकि वो एयरपोर्ट के थ्रू अपनी कंट्री वापस गए और वहां से अभी भी ट्रैक किया जा रहा है कि कोई और व्यक्ति इससे ग्रसित तो नहीं है. जी हाँ, ऑल्दो उस शिप को, उस क्रूज शिप को कोई भी डॉक करने के लिए कोई भी कंट्री जो है वो अलाउ नहीं कर रही है. स्पेन ने इसके लिए हामी भरी है, लेकिन उन्होंने अपने एक आइलैंड पे उसे जो है वहां पर उसके पास जो है वो रहने के लिए कहा है. उन्होंने सिर्फ इतना अलाउ किया है कि उनके सप्लाईज जो है वो जारी रहे, तो वो उनके एक आइलैंड के पास जो है वो रह सकती है, लेकिन डॉकिंग के लिए उन्होंने भी हाँ नहीं किया है. सो अगेन, ये जो पैसेंजर्स थे ये क्रूज शिप में जो कि अर्जेंटीना से निकली थी, वहां से ये सारा का सारा काम शुरू हुआ है. इनफैक्ट इसमें से एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा कि कैसे वो बहुत ज्यादा डरे हुए दिख रहे थे, कैसे उन्होंने कहा कि हम कोई न्यूज नहीं है, हम कोई हेडलाइन नहीं है, हम रियल लोग हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं. अगेन, जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंट्री इनको अलाउ नहीं कर रही है शिप को डॉक करने के लिए, और इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं. इनफैक्ट इसमें कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, लेकिन अगेन देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कुछ और लोग इससे ग्रसित हैं या नहीं, लेकिन अगेन इस शिप को डॉक नहीं किया जाएगा. और जो लोग निकलकर पहले ही जो नीदरलैंड के हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं उनका अभी भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी के लिए अपडेट यही है कि एक और केस इसका हो गया है, बढ़ गया है. जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ, चांद की जरूरत है जैसे, ऑफ कोर्स बाकी की बात हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर एक और बहुत ही फनी सिचुएशन सामने आई है, और फनी के साथ साथ मैं कहूंगी बहुत ही पते की सिचुएशन भी है, लेकिन ये गलत भी है सही भी है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी ये गलत है या सही है। सो ऑफ कोर्स मैं आपको एक बहुत ही फनी किस्सा बताने वाली हूँ। कल ही की बात है, मैं अपना सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर एक सामने मेरे सामने जो है वो एक रील आती है, उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो सामने थी और उसमें लिखा हुआ था रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट ने दहेज में मांगी सीटी स्कैन की मशीन। क्या बात है, क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट ने दहेज में मांगी सीटी स्कैन की मशीन। मतलब आपने बहुत सारे दहेजों की बात सुनी होगी, कहीं पर जमीन मांगते हैं, कभी से जायदाद मांगते हैं, कभी पे हीरे और जवाहरात मांगते हैं, मतलब किसी ने सीटी स्कैन की मशीन नहीं मांगी होगी, लेकिन इस बंदे ने ये भी कर दिखाया। सबसे बड़ी बात है कि दहेज लेना या देना बहुत ही गलत है, और ऑफकोर्स ये बहुत ही रूढ़ीवादी इलाकों में ही होता है, भारत के कुछ इलाकों में। बट द थिंग इज कि यहां पर सिचुएशन इतनी फनी है कि बंदा देखो बाकी सारी चीजों के पीछे नहीं जा रहा है। यहां पर मैं कहूंगी कि दहेज लिया तो लिया, पर बड़ी काम की चीज का दहेज लिया। मतलब कहा होगा कि देखो आपकी बेटी को पूरी जिंदगी खाना खिलाऊंगा, रेडियोलॉजिस्ट तो मैं हूं ही, अगर आप सीटी स्कैन की मशीन मुझे दे दो तो क्या क्या क्या एकदम मजेदार काम हो जाएगा। जी हाँ, मतलब पूरी जिंदगी का कारोबार सेट हो जाएगा, पूरी जिंदगी का काम जो है वो सेट हो जाएगा, कहीं धक्के ही नहीं खाने पड़ेंगे, आपकी बेटी को पूरी जिंदगी खुशी से खाना खिलाऊंगा और खाने की कोई कमी नहीं होगी, घूमने की कोई कमी नहीं होगी, बस आपको करना क्या है, आपको जमीन जायदाद नहीं देनी है, बस सीटी स्कैन की मशीन देनी है। जी हाँ, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, कि मतलब इज इट अ गुड थिंग, दहेज लेना और देना गलत बात है, लेकिन यहाँ पे बंदे ने दहेज जो लिया है वो बड़ी पते की चीज है। मैं कहना चाहूंगी कि दहेज यू नो अवार्ड ऑफ द एयर का अगर कोई कहना चाहे, कोई बात करे, तो इस बंदे को जरूर मिलना चाहिए। मतलब हमने बहुत सारी और चीजों का दहेज सुना था, पर सीटी स्कैन की मशीन, भाई अपने करियर से रिलेटेड चीज ली है उसने, सोचने वाली बात है, राइट? मतलब ये तो वही वाली है कि टैक्सी ड्राइवर मांग रहा है एक गाड़ी, जी हाँ, और कोई और मांग रहा है कोई और चीज, यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट है तो उसने मांग ली सीटी स्कैन की मशीन। क्या बात है, आप बताइएगा क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो अगेन बहुत ही खास है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, तो बिना देर किए हुए शुरुआत करेंगे इस सेगमेंट की एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों है ज्यादा खास। इसलिए है खास क्योंकि इसमें हम पूरी तरह से प्ले करते हैं आपके लिए पुराने गाने, वो खूबसूरत वादे, वो खूबसूरत यादें। जी हाँ, सो अगेन खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें उस एरा की, उन खूबसूरत सितारों के साथ। जी हाँ, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी चमक को सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी आर्ट को सेलिब्रेट किया जाता है, और किस्से होते हैं पुराने, गाने भी होते हैं सुहाने। जी हाँ, सो अगर आपके पास कोई पुराना गाना है जो कि आप फरमाइश करना चाहते थे काफी टाइम से, जल्दी से कर दीजिए क्योंकि दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट टाइम। एंड बिल्कुल देर मत कीजिएगा। इसी के साथ पहला गाना जो इस सेगमेंट में मैं आप सबके लिए प्ले करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज्यादा खास है। रफी साहब का हर चेहरा यहाँ चांद, हाँ क्या ही कहा जाए इसके बारे में। तो सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी और भी बातें।

0: साथ अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मैं सुनाने वाली हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। ये किस्सा है वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में, और ये राम तेरी गंगा मैली का गाना है, एक राधा एक मीरा। आई डोंट नो, जब मैंने उस गाने को पहली बार सुना था ना, मुझे तभी प्यार हो गया था उस गाने से। बट उस गाने के बनने की स्टोरी भी जो है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। अब जी हाँ, आपको पता ही होगा कि इस मूवी को बनाया है द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब ने। लेकिन ये गाना इस मूवी में कैसे आया, वो कहानी वो किस्सा मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सो रणधीर कपूर ने इस किस्से के बारे में बयां किया है। रणधीर कपूर कहते हैं कि एक बार की बात है, मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी में, और वहां पर रविंद्र जैन परफॉर्म कर रहे थे। वो बहुत सारे गाने गा रहे थे और उसी में वो गाना गाते हैं, एक राधा एक मीरा। जब वो गाना गाते हैं तो राज कपूर साहब यानी कि मेरे पिता उसे सुनकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, अब ऐसे में जब राज कपूर तालियां बजा रहे हैं तो 150 लोग और तालियां बजाने शुरू कर देते हैं। फिर क्या था, राज कपूर उनको कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम एक बार फिर से मुझे वो गाना सुनाओ। रविंद्र जैन सोचते हैं, सुनते हैं कि राज कपूर को मेरा गाना इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो मैं एक बार फिर से गा देता हूं। जी हाँ, रविंद्र जैन ने बिल्कुल देर ना करते हुए फटाफट वो गाना फिर से गा दिया। अब सामने से राज कपूर जब गाना खत्म होता है वो पूछते हैं कि ये किस तस्वीर का गाना है, तो सामने से रविंद्र जैन कहते हैं कि ये किसी तस्वीर का गाना नहीं है, ये किसी पिक्चर का गाना नहीं है, ये मेरा प्राइवेट गाना है। तो सामने से राज कपूर कहते हैं, अच्छा तो बस फिर ठीक है, अब से ये गाना मेरा हुआ और मैं इस गाने को किसी फिल्म में लूंगा। फिर उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा फनी और दिलचस्प था, विच आई एम गोना टेल यू अबाउट। लेकिन पहले मैं आपको एक और खूबसूरत सा गाना सुनाने वाली हूँ।
1: एट इट्स कोर, विंडोज एम्प्लीफाइज ह्यूमन।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ राज कपूर साहब का फिल्म राम तेरी गंगा मैली में कैसे शामिल हुआ गाना। ओहो हो, आपको पता ही है, एक राधा एक मीरा। मैं उस गाने के बारे में जितनी बात करूं उतनी कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे राज कपूर और रणधीर कपूर गए थे दिल्ली किसी शादी में और वहां पर रविंद्र जैन इस गाने को गाते हैं। राज कपूर एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनसे एक बार गाना गवाते हैं, दूसरी बार गवाते हैं और तीसरी बार कहते हैं कि ये गाना किसी का है तो बता दो, नहीं तो मैं इसे अपनी पिक्चर में ले रहा हूं। तो सामने से रविंद्र जैन इतने खुश हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो सीधा आकर राज कपूर की गोद में बैठ जाते हैं। राज कपूर उनको देखते हैं, वो कहते हैं वाह वाह वाह, बाकी सब ठीक है पर अभी जाओ फिर से अपना संगीत बजाओ। रविंद्र जैन इतना ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं कि राज कपूर मेरे प्राइवेट गाने को अपनी फिल्म में लेना चाहता है। फिर क्या है, वहां से वो वापस आ जाते हैं और फिर वो रणधीर कपूर को कहते हैं, डब्बू ऐसा है कि आज 7-8 लोग तुम्हारे घर पर खाने आएंगे, तुम्हारे घर पर सही रहेगा, और तो तुम कह देना कि 7-8 लोग खाना खाने आने वाले हैं, मैं भी आऊंगा और थोड़ा इंतजाम कर देना उनके लिए। तो रणधीर कपूर ठीक कहते हैं कि ठीक है ओके। वो अपनी वाइफ को कहते हैं बबीता जी को कि ऐसे ऐसे कि कुछ लोग आने वाले हैं और वो उनको देखती है कौन लोग आने वाले हैं। तो सामने से रणधीर कपूर कहते हैं कि अरे पिताजी ने कहा है, पापा ने कहा है, अब किसी ने कहा है तो कुछ अच्छे लोग ही आने वाले होंगे, अब स्वागत तो करना पड़ेगा। फिर क्या था, सब कुछ वहां पर जो है वो सिस्टम वहां पर बैठाया जाता है, लेकिन उनको तब तक नहीं पता था कि एग्जैक्टली यहां पर क्या होने वाला है। फिर एक एक करके सब अपना तानपुरा लेके, हारमोनियम लेके और बाकी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर वहां पर आते हैं। वहां पर चद्दर बिछाई जाती है, नीचे बहुत ही अच्छे से एक महफिल सजाई जाती है और फिर रणधीर कपूर देखते हैं कि रविंद्र जैन भी वहां पर आते हैं। फिर क्या था, रविंद्र जैन आ जाते हैं, वहां पर सब कुछ चल रहा होता है और राज कपूर की महफिलें मतलब उनकी पार्टीज जो है वो हमेशा से लेजेंडरी रही हैं। जी हाँ, वहां पर भी कुछ वैसा माहौल था। बस वहां पर सब बैठ जाते हैं और राज कपूर फिर से राजिंद रविंद्र जैन को कहते हैं कि रविंद्र जैन जी फिर से जरा वो मेरा वाला गाना प्ले कर दीजिए। रणधीर कपूर कहते हैं कि ओ शिट, मैं सोच रहा था कि फिर से वो ना शुरू हो जाए, फिर से वही शुरू हो गया, मतलब पिताजी ने फिर से वो गाना गाने के लिए कह दिया, मैं पहले ही इसे इतनी बार सुन चुका हूं और नहीं सुनना चाहता हूं। तो राज कपूर उन्हें कहते हैं रविंद्र जैन को, रविंद्र जैन उसे गा देते हैं। फिर से कहते हैं वाह वाह वाह एक बार और, फिर से गा देते हैं, फिर एक बार फिर से गवाते हैं और फिर वो रणधीर कपूर को बुलाते हैं और कहते हैं डब्बू तुम्हारे पास चेक है। अब सामने से रणधीर कपूर क्या कहते हैं, नहीं है। ऑफ कोर्स वो कहते हैं हाँ मेरे पास चेक है। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो 25,000 रुपए की अमाउंट साइन करो और ले आओ, रविंद्र जैन जी को देनी है। रणधीर कपूर बड़े ही अच्छे से कहते हैं, सोच ही रहा था कि ए ले गए मेरे 25,000 रुपए, इन्होंने पिक्चर तो बनानी नहीं है लेकिन यहां पर 25,000 रुपए मेरे वेस्ट होने वाले। फिर क्या था, वो कहते हैं कि बाप ने कहा था देने तो पड़ते, वो फटाफट अंदर से 25,000 रुपए की अमाउंट साइन करके लाए और बाहर आकर बैठ गए। राज कपूर फिर से कहते हैं रविंद्र जैन को, एक बार फिर से वो गाना गा दीजिए ना, मेरा वाला गाना गा दीजिए ना। रणधीर कपूर तब तक तो बेचारे उस गाने को सुन सुन के ही परेशान हो गए थे, मतलब उनको लग रहा था कि एक और बार मैंने ये गाना सुन लिया तो मेरा सर फट जाएगा। फिर जब गाना खत्म होता है तो सामने से वो रणधीर कपूर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि डब्बू जाके रविंद्र जैन जी को ये चेक दे दो। रणधीर कपूर उठते हैं और रविंद्र जैन को वो चेक उनके हाथों में पकड़ा देते और रविंद्र जैन वहीं रोना शुरू कर देते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ही सरियल ये मोमेंट लग रहा होता है कि सच में क्या राज कपूर मुझे अपनी फिल्म में ले रहे हैं। जी हाँ, ये है इस खूबसूरत गाने एक मीरा एक राधा एक मीरा की कहानी। इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत मैं प्ले करने वाली हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ये फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से। गाने का नाम है हसीन वादियों फिजाओं से कह दो। अच्छा, क्या कहना है, आइए जरा जानते हैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए, खूबसूरत गानों के लिए ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को। ये रहा आपका गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, आपने देख लिया होगा घड़ी इशारा कर चुकी है और घड़ी ने कह दिया है कि निव्या शर्मा आज के लिए अब रुखसती लीजिए, क्योंकि कल आपको वापस आना है और कल है फ्राइडे, तो बहुत ही अच्छे गानों के साथ वापस आना है। वेल, मैं समझ गई हूँ, आप भी समझ जाइए यहाँ पर। और अब लास्ट और बहुत ही खूबसूरत गाना सुनने के लिए तैयार हो जाइए हमारे इस प्रोग्राम का, क्योंकि अगेन वो भी एक फरमाइशी गीत है। गाने का नाम है जो बात तुझमें है और ये ताजमहल मूवी का है, 1963 में जो आई थी। सो थैंक यू सो मच सबके लिए, थैंक यू सो मच बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो आपका साथ रहता है हमारे इस प्रोग्राम में, और आपका साथ ही इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है। ऐसे ही साथ को हमेशा बनाए रखिए, ऐसे ही हमें अपनी खूबसूरत लम्हों में शामिल करते रहिए। एंड दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत फरमाइशी गीत मेरी बहुत ही प्यारी लिसनर की तरफ से। बाय, सी यू, टाटा, मिलना होगा अब आपसे कल।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में बाढ़ और तेज बारिश को लेकर निगरानी जारी है और अधिकारियों ने ड्रेनेज सिस्टम पर सवालों को फिर से अहम बताया है। वहीं शहर की हाउसिंग पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव दिख रहा है, क्योंकि ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ऊंची इमारतों को बढ़ावा देने की दिशा में बढ़ रही है। इसी के साथ परिषद की टॉल ओवर स्प्रॉल रणनीति के तहत कई उपनगरों में 30 मंजिल तक की इमारत की योजना सामने आई है। वहीं ब्रिस्बेन के स्टेफर्ड सीट पर 16 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थानीय राजनीति गर्म बनी हुई है। इसी के साथ क्वींसलैंड में रेल सेवाओं को लेकर भी यात्रियों के लिए सावधानी की सलाह दी गई है, क्योंकि मजदूरी विवाद से सेवाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी से जुड़े मुद्दे, खासकर आयोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब भी स्थानीय चर्चा का बड़ा हिस्सा बने हुए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रणनीतिक हलचल तेज है और पटना में सियासी गतिविधियों पर पूरे दिन चर्चा बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु में विजय के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, जिससे राज्य की राजनीति में अनिश्चितता बनी हुई है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है और इस मामले ने राजनीतिक बहस को फिर से तेज कर दिया है। वहीं भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए पर बड़ा दबाव नहीं दिखा और बाजार ने समिति दायरे में ही प्रतिक्रिया दी। वहीं कई आर्थिक जानकारों की नजर अब अगले नीतिगत संकेतों और घरेलू बाजार की स्थिति पर बनी हुई है, क्योंकि मौजूदा माहौल में निवेशक सतर्क हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की संभावना को फिर से खुला रखा है, जिससे पश्चिम एशिया की कूटनीति पर नई चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं गाजा और इसराइल से जुड़ी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और हालिया हवाई हमलों में मानवीय चिंता को और बढ़ा दिया है। इसी के साथ लातविया में रूसी सीमा से आए दो ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिससे नाटो क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। वहीं यूरोपीय संघ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियमों पर अस्थायी सहमति बनी है, लेकिन इसे लेकर आलोचना भी तेज है। वहीं चीन और ताइवान को लेकर भी कूटनीतिक खींचतान बनी हुई है और बीजिंग में होने वाली संभावित बातचीत पर दुनिया की नजर है। इसी के साथ वैश्विक स्तर पर AI, सुरक्षा और भू राजनीति, तीनों मुद्दे आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में धुरी बने रहे। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले IPL 2026 का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और प्लेऑफ मुकाबलों की तारीखें भी तय हैं। वहीं इस बार प्लेऑफ के मैच 26, 27 और 29 मई को होंगे, जबकि मुकाबले मुल्लांपुर और धर्मशाला में कराए जाएंगे। इसके साथ टूर्नामेंट में आखिरी चरण को लेकर टीमों में तैयारी तेज हो गई है, क्योंकि अंक तालिका अब निर्णायक मोड पर बनी हुई है। इसी के साथ क्रिकेट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भी बड़े बदलाव दिख रहे हैं, जहां कई देशों में वर्ल्ड कप और टूर्नामेंट शेड्यूल चर्चा में है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: झूठे को आराम न आए लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त,

बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉपअप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हां तुसी बने होए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असी गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालो नाल इन्हां गल्लां नूं असी पंजाबी गीतां दा तड़का हमेशा दी तरह जरूर लगाउणा है। तां इस शब्द विच तुसी की करना है, तुसी बस जुड़ना है साडे नाल, वड़वड़ दे नाल जुड़ना शुरू करो। रेडियो बिस्वानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी, ते बिस्वानी @bisswani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसी ओह अपना सकदे हो, पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर करते रहा करो, है ना। तां फटाफट दे नाल तुसी चक्को अपना फोन ते जुड़ो साडे नाल। मैं हुणे वापस आउंदी हां, उहनां समां इह सोहणे जी गीतां नूं इंजॉय जरूर करो।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.01 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो आज दे दौर विच ना हर किसी नू ओटीटी प्लेटफॉर्म ते फिल्मा ते सीरीज देखना काफी ज्यादा पसंद होता है। दरअसल ना ओटीटी दे लोग सब तो ज्यादा सीरीज देखना पसंद करते ने। इस दी सब तो वड्डी वजह भी है कि दर्शकों नू एक ही प्लेटफॉर्म ते कई सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। जे तुसी भी ओटीटी ते इन दिन कुछ वधिया कॉन्टेंट लभ रहे है क्यों तो अज मैं कुछ शानदार सीरीज बारे तुहानू दसन जा रही हैगी है जो अपनी वॉच लिस्ट विच शामिल जरूर कर दियो क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खास है कि नहीं। इनिया कुछ ज्यादा खास ने जो दर्शकों अपना दीवाना बना चुकिया है कि नहीं ते केड़े केड़े प्लेटफॉर्म्स ते हैगी है की हैगियां ने दस दी उन्होंने बारे एक एक करके। पर पीला एक गीत सुन लो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश शौलक दिनाल से बने हुए। हुण मैं जेड़ी सीरीज बारे सब तो पहला दसनी है की है ओ नू तुसी देख लोगे ना जो सीरीज नू ता तुसी ना एक बहुत ही फेमस हुई है सीरीज असुर जिदी हमेशा गल चलती है। तुसी असुर नू भी भूल जाओगे, इन्नी ज्यादा सोहनी है। ते उसका नाम पता की है? उसका नाम है दहाड़ जी। हाल इस दिविच पहला नाम ही दहाड़ ता है। ते इस सीरीज दिविच सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल दिविच है की है। 2023 विच रिलीज हुई सी यह सीरीज। यह सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो ते हैगी है, उत्थे जाके तुसी देख सकते हो। इसे हर एक एपीसोड विच तुहानू शानदार एक्शन देखण नू मिलूगा, बहुत ज्यादा सोहनी हैगी है। इस विच उहनां दे नाल मतलब सोनाक्षी सिन्हा दे नाल विजय वर्मा भी है ते गुलशन दवैया भी है। ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगी, जे तुसी नहीं देखिया तां इन्ना जरूर कहूंगी कि जिहड़ा एक्टर तुहानू हर जगह हीरो हीरो हीरो हीरा नजर आउंदा उही कुछ अजिहा कर जांदा कि तुसी सोची पै जाओगे। ते सोनाक्षी सिन्हा दी बहादुरी तां काबिले तारीफ है, एक्टिंग बहुत ज्यादा शानदार कीती है। तुसी देखियो जरूर एक बार।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो जे थोनू पाताल लोक देखनी बहुत ज्यादा वधिया लगती है तो यह लिस्ट विच पाताल लोक ही है दूजे नंबर ते। जे तुसी देखे हो पाताल लोक दे दोनों सीजन क्योंकि बहुत वधिया है। ते जे तुसी जयदीप अलावत दे फैन हैगे हो तां पाताल लोक तां बेस्ट ही है ना। देखो ये सीरीज ना लोगों को खूब पसंद आई है। इस सीरीज विच थोनू जबरदस्त थ्रिलर ते सस्पेंस दोनों चीजा देखने को मिलेंगी। जेकर थोनू सस्पेंस वाली सीरीज पसंद है तो तुसी इसनू अपनी वॉच लिस्ट विच शामिल कर लो। इस सीरीज प्राइम वीडियो ते देखी जा सकती है। जयदीप अलावत की जिम्मे पहला गल की ना, तुसी जयदीप अलावत के फैन हो ना तो यह जबरा फैन बना दूगी इस सीरीज थोनू उन्हों का।
1: Show mercy on it.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी 101.1 ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए। बहुत होगी बॉलीवुड की गल, थोड़ी हॉलीवुड वाल भी नजर मार लेने हैं जी। हाँ, क्योंकि जी मैं हमेशा कहनी हुनी है ना कि मैं सिर्फ बॉलीवुड बारे नहीं पूरी दुनिया बारे गल करनी हैगी है। तो जेड़ा तीसरे नंबर ते जेड़ी सीरीज दी मैं गल कर रही हूँ वह बाहर की ही हैगी है, इंडियन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाम है जी उसका ब्रिज सीजन 1। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਜ਼ਨ 1।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 FM ते 4-6 संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक ना सीरीज हैगी है, उस पंकज त्रिपाठी भी है, उस की कहते होंगे अली फजल भी है, विजय वर्मा का एड् वा रोल नहीं है तो पर है, रसिका दुग्गल भी है, श्वेता त्रिपाठी भी है, तो बड़ी वधिया सीरीज है। आई थिंक तुसीं गैस कर लिया होना क्योंकि वह सीरीज है मिर्जापुर इस लिस्ट शामिल है। डार्क एक्शन है इस ते सस्पेंस है, पंकज त्रिपाठी की सीरीज है मिर्जापुर। इस सीरीज का हर सीजन लोगों ने ना खूब सराया है, बहुत ज्यादा प्यार मिले, हर किरदार नू प्यार मिले हैगा है, जो भी हो भी। इस सीरीज नू भी तुसी प्राइम वीडियो ते देख सकते हो, जरूर देखियो, पहले सीजन तो देखना शुरू करो जो, क्योंकि जे तुसी किते विचकार किसी सीजन तो देखना शुरू किया था थानू समझ ही नहीं आऊगा। इस नू देखना है तो थानू फर्स्ट सीजन तो देखना पऊगा।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हां जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 107.1 एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। साउथ दिया मूवीज का भी एक अलग ही क्रेज होंदा है क्योंकि साउथ दिया मूवीज बहुत ज्यादा वधिया हुंदिया ने ते साउथ दे एक्टर्स भी ताइयों सानू बहुत ज्यादा प्यारे लगते ने बहुत ज्यादा वधिया लगते ने। ते जे गल विजय सेतुपति की करिए ना तो विजय सेतुपति ने जदों तो जवान ते विच देखिया विजय सेतुपति नूं उह तां उसदे दा फैन ही हो गए सब। विजय सेतुपति की सीरीज भी इस लिस्ट विच शामिल है ते उह सीरीज हैगी है जी फर्सी। जी हां विजय सेतुपति दे नाल इस सीरीज दे विच शाहिद कपूर ने लीड रोल दे विच इस सीरीज थ्रिल ते सस्पेंस नाल भरी हुई है। नाम तो ही पता लग रहा है फर्जी बहुत कूल जिहा अंदाज दिखाया होया इत्थे इन्हां दा ते बहुत ही सोहनी सीरीज है की है। एक फादर सन दा बॉन्ड भी दिखाया होया है, एक्शन भी बहुत है, सस्पेंस भी, थ्रिलर भी, क्राइम भी, सब कुछ हैगा। तो तुसीं इस नूं एक बार जरूर अपनी वॉचलिस्ट विच पाओ।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हां जी आनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्टोनी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो और अगले नंबर दी जी गल करिए ता उस ते हुंदा जी अफसोस 6वां नंबर आ गया है शायद तुसी ध्यान नहीं दित्ता पर 6वां नंबर आ गया अफसोस वेब सीरीज वेस विच मौजूद है इस सीरीज विच थानू कमाल दा थ्रिलर देखण नु मिलूगा ते ए ब्लैक कॉमेडी सीरीज है की है उस बाद दी लास्ट आवर भी है लास्ट आवर भी इस दे शामिल है एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिस विच कमाल दे ट्विस्ट दे टर्न्स देखने मिलते हैं जेकर तुहानू इस नू एक बार देखना तुसी शुरू किता ना तो तुसी पूरा किते बगैर उठ ही नहीं पाओगे इन्नी वधिया है सीरीज

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Celebrate Mom this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mom this Mother's Day. Terms and conditions apply.
10: Bigger, better deals.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आया तो सबने बोला एके होयो भाया। नाम से डोनाल्ड ट्रंप और हरकत से डोनाल्ड डक न

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भैया नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
2: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हम जीत गए।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ, बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

Yeah, that was the message. And Dawson Street, Woolwin Me, multi vehicle crash wahe. Lane, all lanes are blocked both directions. Honor Avenue, Graceville, यहाँ पर signal fault hazard है, no blockage all directions. तो दोस्तों ये कुछ updates और traffic news आपको दे रहे थे, और जैसे हमारे पास कुछ और हाथ लगता है तो आपको बताते चलेंगे. वैसे रास्ते पे है, आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में.

सब बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी आपकी अपनी पहचान। कहते हैं कि रोज बाटे रोज बढ़ेगी, एक मुस्कुराहट दूसरी दुआ। प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में. वैसे आज अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको. और एनिवर्सरीज अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू हैव अ वेरी हैप्पी हैप्पी डे. और मेमोरीज रिलीव कर रहे हैं आज आप अपना, तो वेल एनिवर्सरीज तो होती है ऐसे, तो अच्छे अच्छे मेमोरीज जो है उनको सेलिब्रेट कीजिएगा. आशा है ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. इट्स 7:31, रास्ते पर है आप, हौले हौले सफर कीजिएगा. घर पर चाय कॉफी एंजॉय कर रहे हैं. चीयर्स. विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी मॉर्निंग.

दोस्तों, आप सुबह का सफर में शामिल हैं और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। दोस्तों, आज कुछ लाए हैं। वैसे इसके बारे में, हेल्थ के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, लेकिन आज आपका जो एज है वो जैसे जैसे बढ़ता है तो चांसेस होते हैं कि अपने बॉडी के अलावा जरूरी है कि अपना जो ब्रेन हेल्थ है उसका भी बेहद ख्याल रखें। और ये जो आर्टिकल है, ये रिटन सपोर्टेड बाय डॉक्टर विनीत बंगा, ये डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी है एट फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो उन्होंने शेयर किया है कि क्या कुछ हम खा सकते हैं अपने ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और कहा है मेजरली फ्रॉम द एजेस ऑफ 45 to 54 या 40s में अपने जो है, तो वहाँ पर ऐसा होता है इस एज में कि जो हमारा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज होता है, जो जिसे डिमेंशिया होते हैं, और विच सर्जेस ओवर टाइम, अचानक से नहीं हो जाता है, तो ये टाइम लगता है। एंड डाइट, हम इस पर अगर अपना जो ख्याल है वो नहीं रखते हैं तो चांसेस है कि ये इसका शिकार हम हो सकते हैं। और हमारा जो मेंटल जो परफॉर्मेंस होता है, कॉग्निटिव जो परफॉर्मेंस होता है, वो वैसे भी थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम फॉरगेटफुल हो जाते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं चीज़ें को, याद नहीं धरते हैं, मेंटल फटीग हमेशा रहता है और कंसंट्रेशन भी लो हो जाता है। और ये ऐसा होता है क्योंकि मल्टीटास्क करते करते ये सब जो कंसंट्रेशन, ये सब थोड़ा डाउन होने लगता है, यू नो, एंड ए ट्रबल रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड ये भी होता है कि कुछ नया सीखने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। तो उन्होंने समझाया है कि ऐसा क्यों होता है और इस एज में ही क्यों होता है। तो बताया है कि जब हमारा ये एज 45 to 54 का टाइम जब होता है, तो यहाँ पर ऐसे होते हैं कि वी आर अटैक्ड बाय अदर डिजीजेस, यू नो, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, यू नो, एंड डायबिटीज होते हैं, कोलेस्ट्रोल वाले प्रॉब्लम होते हैं। ये सब ग्राउंड वर्क होता है जो ब्रेन को थोड़ा अफेक्ट करता है, यू नो, एंड दीज आर द थिंग्स। तभी कहते हैं कि ये चीज़ों को अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, देन वी वेल एंड गुड, हैप्पी टू गो, ला ला ला। लेकिन अगर हम ये अगर इस एज में इन डिजीज़ों का शिकार हो जाते हैं, देन हमारा जो ब्रेन हेल्थ है वो भी आहिस्ते आहिस्ते नीचे चला जाता है। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। तो क्या कर सकते हैं कि ब्रेन हेल्थ, वैसे तो अब वहाँ पर जाकर उसको एक्सरसाइज तो नहीं करा सकते। हाँ, मेंटल एक्सरसाइजेस के बारे में हमने बात किया है पहले कि क्या कर सकते हैं, यू नो, और अपने माइंड को झटका देने के लिए कुछ कुछ कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करना चाहिए। उसके बारे में आई थिंक आई हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस। एंड लेकिन किस तरह का जो भोजन है, फूड है, ये कौन सा फूड खा सकते हैं ताकि आपका जो ब्रेन हेल्थ है वो अच्छा रहे, और यू नो, हाईली जो फूड आप खाएंगे वो हाईली रेस्पॉन्सिव होगा आपके ब्रेन के लिए। तो यहाँ पर राइट लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करना है। और जैसे कि फूड, सबसे बेसिक वाला चीज़ है कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स दैट प्रोटेक्ट ब्रेन सेल्स फ्रॉम डैमेज। जैसे कि बेरीज होता है, ब्रोकली होता है, स्पिनच होता है, केल होता है, एवोकाडो, कैरेट, ऑरेंजेस, अनार, बेल पेपर्स, यू नो, ये सभी चीज़ जो कलरफुल, जितना कलरफुल उतना ही अच्छा। तो ये अगर आप अपने डाइट में डालते हैं तो, यू नो, ये आपको हेल्प करेगा अपने ब्रेन हेल्थ में। एंड देन होल ग्रेन्स आप अपने, यू नो, जब खाते हैं होल ग्रेन्स, जैसे ब्राउन राइस है, ओट्स है, किनोआ है, तो ये बेटर है देन हेवियर कार्ब्स जो आप, यू नो, नॉर्मली अगर हम लेते हैं। तो उससे जैसे कि ये जो ब्राउन राइस एंड स्टफ जो अभी हमने कहा, ये क्या करती है, जो शुगर स्पाइक्स होते हैं वो अवॉइड करता है या फिर कंट्रोल करता है।
इसका सब लोअर ग्लासेमिक इंडेक्स है, इसका मतलब है जल्दी से शुगर ओपन नहीं करता, यू नो. सो स्लोली ओवर टाइम ये शुगर स्प्रेड आउट होता है आपके आपके बॉडी में, तो ये बहुत अच्छा है. एंड फूड रिच इन ओमेगा 3, ये बहुत अच्छा है, जैसे कि फैटी फिशेस और फ्लैक्स सीड्स जो है, चिया सीड्स है और वॉलनट्स है. और फैटी फिशेस जो होता है ये जो ये नॉर्मल वाइट स्किन वाइट फ्लैश वाला फिश नहीं, फैटी फिश जैसे कि सार्डिन्स होते हैं, टूना, आई थिंक टूना भी है, एंड बट आपको चेक करना पड़ेगा. लेकिन सभी जो जो आप फ्रेश फिश खरीदते हैं, जो आप जो वाइट फ्लैश इसका होता है, वो जो शैलो एरिया में लेते हैं, डीप सी में जो हार्वेस्ट होते हैं, जहाँ से फिश आप लेते हैं, वो बेसिकली फैटी फिशेस है, एंड दे वेरी रिच इन ओमेगा 3, तो ये आप खा सकते हैं. सो जस्ट अ लिटल समथिंग दोस्तों, आपको रिमाइंड करने के लिए कि अपने जो लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं आपके अपने ब्रेन हेल्थ के लिए, ताकि अगर पहले से कोई अगर हाई ब्लड प्रेशर या कुछ है, इसमें डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस करें अपने डाइट में, एंड देन वी शुड बी गुड टू गो. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

वेलकम बैक दोस्तों। और ट्रैफिक अपडेट्स देते हैं। पैसिफिक मोटरवे मैकग्रेगर, यहां पर स्टेशनरी व्हीकल हजार है, नो ब्लॉकेज दो। साउथ बाउंड टूवर्ड्स गोल्ड कोस्ट एंड ब्रूस हाईवे खलंगा, यहां पर कंजेशन है, नो ब्लॉकेज साउथ बाउंड टूवर्ड्स ब्रिस्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। वैसे काफी दिनों से ये मैं सोच रही थी कि हमारे जो एल्डर्स है और रिटायर्ड है, घर पर रहते हैं, और जो इमिग्रेंट्स भी होते हैं, जो अपने जो लाइफ टाइम जहाँ पर अपनी जिंदगी बिताए हुए हैं, वो उसको छोड़कर जब अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आकर रहते हैं, देन समटाइम्स यहाँ पर आई फील कि इतने सारे जो फैसिलिटीज नहीं है, जो इन टाइप के, जैसे एज हो जाता है किसी जन का, तो उसे नौकरी दे। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप रिटायर्ड है तो आप जाकर फिर से नौकरी करें, ये बात नहीं है। बट द थिंग इज कि जब आप अपने देश, जहाँ पर भी आप रहते थे, वहाँ पर आपका एक लाइफस्टाइल होता था, एंड आप कुछ ना कुछ करते थे, आपके आप यू फेल्ट कि आपका भी कुछ है। एंड जब आप यहाँ आते हैं, और स्पेशली एट अ सर्टेन एज आप यहाँ पर आते हैं, इवन दो यू हैव दैट बैकअप जो आपका होता है मनी को लेकर एक्सेट्रा, लेकिन आप ऐसा फील करते हैं कि यू हैव लॉस्ट समथिंग, जैसा अपना कुछ। बच्चे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपका अपना कुछ, जैसे अगर आप बैक होम होते हैं, यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव योर कम्युनिटी, यू हैव थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू गो, एंड ऑल इन ऑल यू हैव अ लाइफ, राइट? यहाँ पर है, अभी कभी कभी आप सुबह आप वर्क जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कोई एल्डरली पर्सन को, जो आप फील करते हैं कि यहाँ पर अभी अभी आए हैं, इमिग्रेंट है, तो वो कर रहे होते हैं। अभी आपने शायद अगर इंडिया विजिट किया होगा, या इवन फिजी में भी, तो अर्ली मॉर्निंग जो एल्डर्स है, वो दे आर अप एंड अबाउट डूइंग देयर वॉक्स एंड स्टफ, एंड यू नो हैविंग द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ। एंड फिजी में भी अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे कि रास्ते पर है, वॉक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दे आर डूइंग समथिंग, यू नो। एंड यहाँ पर आई फील चार दीवारी के अंदर बस रह गए हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी प्लेस जहाँ पर ये जाकर जो अपना लाइफ है उसे वही फुलफिलमेंट के साथ बिता सके? अगर आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और जस्ट मेकिंग एवरीवन फीलिंग द सेम अबाउट देमसेल्व्स, यू नो, कि अच्छा फील कराना, कुछ करना, या फिर इन सम वे बीइंग वैल्यूड फॉर योरसेल्फ, एंड ये बहुत ज़रूरी है एक पर्सन के लिए। जस्ट अभी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एज हो गया है तो आप बस ऐसे ही है, आपका भी कुछ है, यू हैव अ आइडेंटिटी। आप ऐसे ही नहीं है कि अब इन बच्चों का लाइफ है तो आपका कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देर शुड बी समथिंग जहाँ पर ये जाकर जो एल्डर्स है वहाँ पर जाकर दे हैव फन, कैरम हो जाए, या फिर एनीथिंग ऑफ इंटरेस्ट, अगर गार्डनिंग होता है या कुछ सिखाना होता है, समथिंग जहाँ पर ये मज़े कर सके। तो अगर आप इनाला जाओगे, जस्ट टॉकिंग, तो वहाँ पर यू सी, अगर वेजिटेबल शॉपिंग करते हो आप, लेकिन यू हैव दिस पीपल जो राउंड द टेबल बैठ कर कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं एंड दे आर हैविंग फन एंड दिन भर उनका वहीं बीतता है. कुछ ऐसा हो सके जो हमारा जो कम्युनिटी है वो कुछ ऐसा कर सके. हाँ, सो आई एम जस्ट पासिंग इट आउट टू गाइज. अगर आप कुछ सोच सके तो मुझे जरूर बताएं, बिकॉज आई बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं ये गीत.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: वेलकम बैक दोस्तों. 3 मिनट हो गए हैं 8:00 और 1 घंटे का सफर बाकी है. दोस्तों हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका. ब्रिस्बेन में 12 डिग्रीज है अभी और कहते हैं कि बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए. बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.
11: दिल मेरा चुरा लो, आंखों में छुपा लो अपने.

धर्म।

दोस्त, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। 10 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, सुबह का सफर में आप शामिल हैं और मैं हूं आपके साथी नीलम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जैसे कि अभी फ्रूट बाइंग आप करते हो, एंड आई एम श्योर एवरीवन नोज द बेस्ट फ्रूट, और घर में एक पर्सन होता है जो स्पेशलाइज करता है, यू नो, कि पापा को बुला दो, अभी वाटरमेलन चूज करना है, कौन सा यू नो स्वीटा है। कभी कभी चांसेस हो जाते हैं प्लस और माइनस, यू नो, जब घर पर आता है, लेकिन कोई बात नहीं। और यू नो, तो अभी हमारे पास है एक टिप, अगर आप ग्रेप्स बाय करते हो और कैसे जान सकते हो कि ये वाला जो बंच है ग्रेप का वो बहुत ही स्वीट है, तो आप उसका जो ग्रेप है उसका स्टेम देखोगे। स्टेम अगर ग्रीन होगा तो स्वीट नहीं है ग्रेप्स, अगर स्टेम डार्क है और That means कि जो grapes है अंदर वो बहुत sweet है। तो ऐसे ही आप परख सकते हैं कि कौन वाला grape आप buy करेंगे। वैसे अगर आप वो even आप जब देखते हो अदरक जब आप खरीदते हो, there is one अदरक जो rough है, slightly dirty looking है, और यू वुड थिंक दिस इज अ मच्योर्ड वन, राइट? लेकिन एक वाला है जो शाइनी है, स्मूथ है, थोड़ा लाइटर स्किन है, ये फ्लेवरफुल नहीं है, फाइबर भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो डार्क वाला है, रफ लुकिंग गाय है, एंड यू थिंक कि ये थोड़ा मच्योर्ड है, एंड दैट्स द बेस्ट वन टू बाय अगर अदरक खरीद रहे हैं। लेकिन अदरक अगर आप खरीद रहे हो तो इसी तरह से आप पहचान सकते हो। वैसे हमारे घर पर जो हमारा पेट डॉग है डीजल, आप जानते हैं उन्हें, तो अगर बनाना लाते हो, कहते हैं कि स्लाइटली स्पेकल्ड जो बनाना होता है वो बहुत ही स्वीट है, और ऑब्वियसली एज इफ एज द बनानाज गो डार्कर, उसका जो शुगर कंटेंट है वो भी इंक्रीज होते जाता है, एंड जो बनाना एकदम से यू नो कोई भी मार्क नहीं होता है उसमें, और एकदम फ्रेश फ्रेश आपने लाया है, तो हमारे घर पर ऐसा है कि अगर बनाना 2 दिन रह गया घर पर, समझो किसी ने खाया नहीं, अगर आप डीजो को खिलाओगे वो जानता है कि दिस बनाना ही वोंट ईट इट। जो बनाना एकदम से फ्रेश आपने बाय किया है और थोड़ा उसका जो टेक्सचर जो आप खाते हो थोड़ा फर्म होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, वो बड़े मज़े से खाएगा, लेकिन जो सॉफ्ट थोड़ा जो ज़्यादा पक गया है, शायद एकदम ब्राउन वाला नहीं, जो थोड़ा स्पेकल्ड हो गया है समझ लो, यू नो ही विल जस्ट स्मेल इट एंड टर्न हिज हेड अवे, दैट्स द मोस्ट ह्यूमन थिंग यू कैन you know see in your dog, and he does that, and that's the best thing ever, and you know sabhi ka pasand hota hai, sabhi jeev jo dharti par hai sabhi ka pasand, jaise aapka koi cheez ekdam favorite hoga ya kisi cheez se aap ekdam se nahi khana chahte unka bhi hai, so yeah, just a bit of information there। chaliye dosto aage badhte hain।

0: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top-up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top-up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top-up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
1: Bigger, better deal.
2: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं. न्यूज में बताया गया है, ये अभी थोड़े कुछ पहले आया था, टू आईएसएस ब्राइड्स चार्ज विद स्लेवरी ऑफेंसेस आफ्टर थ्री अरेस्टेड अपॉन अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया. टू आईएसएस ब्राइड्स हु वर अरेस्टेड आफ्टर अराइविंग इन मेलबर्न यस्टरडे हैव नाउ बीन चार्ज विद स्लेवरी ऑफेंसेस अलेजिडली कमिटेड ड्यूरिंग देयर टाइम इन सीरिया. द टू वुमेन, ग्रैंडमदर कौसर अब्बास 53 एंड हर डॉटर ज़ैनब 31, वर टेकन इनटू कस्टडी बाय फेडरल पुलिस एज़ दे लैंडेड एट मेलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट यस्टरडे. अब्बास हैज नाउ बीन चार्ज्ड विद फोर काउंट्स ऑफ crimes against humanity, including possessing and using a slave, and Zainab has been charged with two counts of crime against humanity. तो ये अभी दोस्तों न्यूज में है. आगे बढ़ते हैं.

वेलकम बैक दोस्तों, और ट्रैफिक अपडेट देते हैं आपको। कॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, यहां पर मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है। राइट लेन ब्लॉक्ड वेस्ट बाउंड टुवर्ड्स कैशर रिच। पैसिफिक मोटरवे मैग्रेगर हजार्ड साउथ बाउंड इज नाउ एक्चुअली दैट्स बीन क्लियर्ड। और पैसिफिक मोटरवे टरागिंडी, यहां पर स्टेशनरी व्हीकल राइट लेन इज स्टेशनरी व्हीकल हजार्ड है। राइट लेन इज ब्लॉक्ड नॉर्थ बाउंड टुवर्ड्स सिटी। और इप्सविच मोटरवे डारा, यहां पर स्टेशनरी व्हीकल हैजार्ड है। ऑल लेन्स आर अफेक्टेड ईस्ट बाउंड टुवर्ड्स सिटी। और चलिए दोस्तों, और भी आगे बढ़ते हैं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आधे घंटे का सफर बाकी है और हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। दोस्तों याद दिला दे कि 9 पर जुमा प्रोग्राम है और चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या फिर घर में वीकनेस आप फील करते हैं, घर में कोई ऐसा है जिसका जो HB लेवल, आयरन लेवल्स है वो लो रहता है, कभी कभी होता है ऐसा, चाहे कितनों भी सप्लीमेंट्स ले ले, आयरन टैबलेट्स ले ले, बट डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। केवल टैबलेट खाने से सब कुछ नहीं होता, डाइट भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कहते हैं जो जैगरी होता है, जैगरी गुड़ और चना जो होते हैं, रोस्टेड चना आप लें, और लेकिन ख्याल रखें जब आप बाय करे जाए सॉल्ट वाला ना लें, जो प्लेन वाला है, केवल रोस्टेड है। एंड बिकॉज सॉल्ट, यू डोंट वांट टू ऐड लॉट ऑफ सॉल्ट इन योर डाइट, राइट? तो जो रोस्टेड चना है एंड जैगरी, ये सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट करते समय या उससे पहले या उसके बाद में दवाई की तरह नहीं लेना है, बस एंजॉय करना है। और उसे रोस्टेड चना खाएं और जैगरी खाएं एवरी मॉर्निंग, ये फिजिकल जो वीकनेस है ये कम करता है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू गेन वेट। अगर आप वेट नहीं गेन करते हैं, नहीं कर पाते हैं ईजली, चाहे कितनों भी आप खाते हैं, तो दीज आर द स्मॉल चेंजेस दैट यू कैन मेक इन योर डाइट। थोड़ा सा ये ऐड कर सकते हैं। गुड़ और चना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैसे कहते हैं परिवर्तन से कभी ना डरे, जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। जस्ट हैव टू वेट फॉर योर टाइम आई गेस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355, याद रहे 04006444355, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं सुबह के सफर में। बस कुछ ही समय बाकी है हमारे और आपके सफर का। ये कुछ ऐसे जाता है, हाँ ठीक हूँ, बस इतना कहने पर कहाँ मानती है माँ, क्योंकि धड़कने उसी की है इसीलिए सब जानती है माँ। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सी शायरी हमारे हाथ लगा, तो शेयर करते हैं सभी मॉम्स के साथ। विश करना चाहेंगे वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे जो संडे को है, और सभी मॉम्स को मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारी विशेस और एंड गुड हेल्थ विश करना चाहेंगे आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत से गीत।

दोस्तों, अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच. बहुत मजा आया और आशा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए अच्छा गुजरे. हैव अ लवली ब्यूटीफुल डे, सेफ वीकेंड. मिलते हैं अगले हफ्ते. टिल देन, नमस्कार.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

दुकान खोल करके इंतजार कर, कोई अल्लाह का बंदा आज सर्दी के मौसम में आ जाए तो मैं सबसे पहले उसको गर्म दूध पिलाऊंगा। ये अल्लाह वाले दुकान के पास से गुजर रहा था तो उसने आवाज दी, हजरत तशरीफ लाइए। ये चले गए, उनको बिठाया, बड़ी मोहब्बत से गर्म दूध पिलाया। दूध पीने के बाद ये अल्लाह का मकबूल बंदा शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो बाहर निकल करके आसमान की तरफ नजर करते हुए कहा, वाह मेरे अल्लाह, कभी तो थप्पड़ मरवाता है और तो कभी ठंडा दूध पिलवाता है। अभी थप्पड़ मैंने खाई और अभी दूध पिलाया गया, ये तेरी अपनी शान है। उधर रोल मियां बीवी घर पहुंचे, घर का दरवाजा खोला, शोहर सीढ़ी पर चल रहा था, पांव फिसल गया, जमीन पर गिरा और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। बीवी बड़ी अफसोस में आ गई, लोग आ गए, फरमा क्या हुआ? फरमा मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह वाला बुजुर्ग को जो थप्पड़ मारा था तो उसने बद्दुआ की होगी, इसकी वजह से मेरा शोहर गुजर गया, मर गया। लोग उनके पास पहुंचे, हजरत क्यों बद्दुआ कर दी, एक आदमी की जान चली गई। जवाब दिया उन्होंने, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, इसके मियां ने अपनी औरत को अपनी मोहब्बत दिखाते हुए कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सका, अपनी महबूबा की तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका और उसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मारा। अपनी औरत को राजी करना था, उसको खुश करना था, इधर मेरे खुदा मेरा रब जो मुझसे मोहब्बत करता है उसने मेरे अल्लाह ने जो मुझसे मोहब्बत करता था मेरी तरफ से बदला ले लिया मुझे खुश करने के लिए। वो बीवी को खुश करने के लिए मुझे थप्पड़ मारा, मुझे खुश करने के लिए मेरे रब ने उसको मारा, बद्दुआ की बात ही नहीं थी। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारे गिरामी है, मन आदा दी वलीयन फकत आजम तो हो बिलहर औकमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुबहानहु ताला फरमाते हैं, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह सुबहानहु ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे किसी दोस्त को तकलीफ पहुंचाई, दुश्मनी की, तो मैं उसको जंग का लड़ाई का अल्टीमेटम देता हूं, ऐलान करता हूं कि अपने खुदा से लड़ने के लिए मैदान में आ जाओ। मन आदा ली वलीयन फकत आज़न्तुहु बिलहर्ब, जिसने मेरे किसी दोस्त को सताया, तकलीफ पहुंचाई, तो फिर मैं उसके लिए जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आवाज तक आओ। हिफाजत फरमाए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, चार इमामों में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। एक मुखालिफ आदमी आपका दुश्मन करीब में आया, कहा अबू हनीफा मैंने सुना है कि तेरे वालिद अब्बा का इंतकाल हो गया है और तेरी माँ बेवा हो चुकी है, और सुना है कि तेरी माँ बहुत खूबसूरत हसीन जमील है और बेवा हो चुकी है और शरीयत का हुक्म है कि बेवा का निकाह कर दिया जाए। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सबर के साथ इस जालिम दुश्मन की बात सुनी तो जवाब में फरमाया, हाँ लेकिन ये भी शरीयत का हुक्म है कि जिसको जिसके साथ शादी करनी है उसकी रजा मंदी होनी जरूरी है, वो राजी हो।

0: शायद शादी हो सकती है। मैं जाता हूं मैं अपनी माँ के पास और पूछता हूं शादी के मुताबिक। इतना बड़ा सबर था। अभी अपनी जगह से उठ करके दो कदम चले थे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उधर वो आदमी मुस्कुराते हुए वापस जा रहा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दो ये कदम चले थे और उधर वो जा रहा था, अचानक उसके पेट में सख्त दर्द हुआ, नीचे गिरा और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की माँ की उम्र 92 ईयर्स की थी। सिर्फ उनको बताना था, तकलीफ पहुंचाना था। जो अल्लाह के दोस्तों को तकलीफ पहुंचाता है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला नाराज होकर के उसको पछाड़ देते हैं। इसलिए किसी पर जुल्म मत करो, किसी को सताओ मत, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आओ। मुसीबतें आए तो सब्र करो, नेमतें मिले शुक्र अदा करो। अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने शाकिर बंदों, शुक्र करने वाले और सब्र करने वाले बंदों से बहुत खुश होता है। किसी को सताओ मत, किसी पर को तकलीफ मत पहुंचाओ। मैंने जो हदीस पढ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें इरशाद फरमाया गया, अशदुल्ला से बलान अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। लोगों में सबसे ज्यादा मुसीबत और आजमाइश और परेशानियां आती हैं अल्लाह के नबियों और रसूलों पर। लोगों में सबसे ज्यादा मुसीबतें और परेशानियां आती हैं अल्लाह के नबियों और रसूलों पर। अशदुल्ला से बलान अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। फिर जो अल्लाह के नबी की ज्यादा इताअत और ताबेदारी करता है, दीन पर चलता है, तो उन पर मुसीबतें आती हैं। तो अल्लाह के दीन पर चलने वाले पर मुसीबतें भी आए, परेशानियां भी आए, तो ये समझो कि अल्लाह सुबहानहु व तआला उसकी के साथ ताल्लुक है। इन्नल्लाह मअ सबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दुआ है कि परवरदिगार आलम इन मुबारक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे और हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आने की तौफीक दे। किसी को सताए नहीं, जुल्म न करें। मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह दे। मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह दे। दिल के दुख जाने से जालिम अर्श भी हिल जाता है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला इन मुबारक बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और रब्बे करीम अपनी रजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। वआखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: भी आप सुन रहे थे आज जुमा है प्रोग्राम में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान। इस स्टेशन पर आज जुमा है प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर करीबन 9:30 बजे तक।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم।

0: जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग बरतर जात है।
1: और रेडियो से बनने वाले ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। ये है रेडियो 1701 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। अभी आप सुन रहे थे आज जुमा है प्रोग्राम में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान। इस स्टेशन पर आज जुमा है प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर करीबन 9:30 बजे।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: वो जिंदाए जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग को बरतर
1: जा। रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 71 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

छूम कर कहने लगे, प्यारी अम्मी जान हमको जल्द समझा दीजिए, किसकी तख्ती ठीक है लिल्ला फरमा दीजिए। फातिमा सहरा ने तख्ती हाथ में ली जिस घड़ी, प्यार से दोनों के चेहरों पर नजर उनकी पड़ी। मामतों से मांगा दिल करवटी बदल कर रह गया, प्यार का जज्बा कलेजे में मचल

क्या कहूँ अब किसकी तख्ती है बुरी, किसकी उम्मीदों की गर्दन पर चलाऊं मैं छुरी। भाई की तारीफ भाई जिस घड़ी सुन पाएगा, मुस्तफा के लाडले नाती का दिल दुख जाएगा। सोच कर ये बात बोली अपने प्यारों से बतूल, फैसला इसका करेंगे सिर्फ दामाद रसूल। मेरे बच्चों मैं जो कहती हूँ उसी को मान लो, जाओ ये तख्ती दिखाओ अपने अब्बा जान को। इतना सुनकर चल दिए शेरे खुदा के सामने, दौड़े दौड़े दोनों पहुँचे मुर्तजा के सामने। फिर रैली शेरे खुदा से भी यही की दीजा, प्यारे अब्बा जान कर दीजिए हमारा फैसला। देकर सख्ती अली को भी यही आया ख्याल, अपनी नाकामी को सुनकर रो पड़ेगा एक लाल। सोच कर इस बात को बोले अली मुश्किल कुशा, जाओ इसका फैसला कर देंगे महबूबे खुदा। जाओ इसका फैसला कर देंगे महबूबे।

अपने जिब्रील को, ये कहा जिब्रील से ऐ मेरे नामा बर सुनो, जाओ ये तख्ती खुदा के सामने ले जाओ तुम, और मेरी जानिब से भी अल्लाह को समझाओ तुम। ये मुकदमा है अली हैदर के नूरे ऐन का, मेरे मौला तू ही कर दे फैसला हुस्नैन का। लेके तख्ती जब खुदा के पास पहुँचे जिब्राइल, इस तरह जिब्रील से कहने लगा रब्बे जलील, जब मेरे दिल भर को इतना पास है हुस्नैन का, फिर मैं कैसे दिल दुखाऊं फातिमा।

अरे नबी के पास जाकर ये कहो, या नबी दोनों की तख्ती पर उछालो सेब को, यानी तुम इस फैसले का जज बना लो सेब को, जिसकी तख्ती पर गिरे।

देखकर ये रंग मौला को मोहब्बत आ गई, जोश में कौनो मकान वाले की रहमत आ गई। फैसला हुक्मे खुदा से यूं बराबर का हुआ, बोल बाला हर तरफ शब्बीर और शब्बर का हुआ। फजल हक से इल्तिजा यूं सेब की लाई असर, हो गए दो टुकड़े गिरा आधा इधर।

होगा दौर शराब और शबाब का, होगा ना कुछ ख्याल अजाब और सवाब का, होंगी ज्यादा औरतें और मर्द होंगे कम, होगा किसी के दिल में ना इंसानियत का गम, ऐसा लिबास होगा बदन आएगा नजर, मर्दों को शर्म आएगी औरत को देखकर, पुरियानी बेहयाई बनाओ सिंगार से, मिट जाएंगी शराफतें फैशन की मार से, घर घर में नाच गानों का होगा रिवाज आम, छोटे बड़े पसंद करेंगे बुरे कलाम, अपने बड़ों की कुछ भी न इज्जत करेंगे लोग, बीवी से प्यार माओ से नफरत करेंगे लोग, औरत की तरह मर्द भी रखा करेंगे बाल, ये 14वीं सदी में मिलेगी नई मिसाल, भूलेंगे लोग

जज्बा ना होगा दिल में किसी एहतराम का, हुक्मे रसूल का न खुदा के कलाम का। कसरत से इस जहान में आएंगे जलजले, कोहे सफा गिरेगा हवाओं के जोर से। बन जाएगा जमाने में एक खेल कत्ले आम, मिट जाएगा जहां से खुलूस व वफा का नाम। दुनिया की बातें होंगी मसाजिद में बैठकर, खाली नमाजियों से रहेगा खुदा का घर। अहले वफा पे लोग बहुत जुल्म उठाएंगे, अहबाब दुश्मनों की तरह पेश आएंगे। मगरिब से होगा जब के जहूर आफ्ताब का, साया गुनाहगारों पे होगा अजाब का। उस वक्त हो सकेगी ना कोई दुआ कबूल, गुजरेगी इम्तिहान से ये उम्मते रसूल। उड़ जाएंगे हुरूफ भी कुरान पाक से, बुझ जाएंगे चराग सभी इल्म दीन के।

0: मद फिरोगी मेहदी अलैहि सलाम की, किस्मत फिरेगी उम्मत खैरुल अनाम की। बातिल के ये चरागों को आकर बुझाएंगे, ईमा का नूर सारे जहां में बढ़ाएंगे। फिर हजरत मसीह भी तशरीफ लाएंगे, दज्जाल का वजूद जहां से मिटाएंगे। कुछ दिन को अमन दौर फिर आएगा दोस्तों, ये दीन अपनी शान बढ़ाएगा दोस्तों। फिर सूर और हश्र के आएंगे मरहले, तूफान उठेंगे हर तरफ आएंगे जलजले। और ये पहाड़ रूई के गालों के तौर पर सारी फजा में उड़ते फिरेंगे इधर उधर। बेटे को माँ का होश न भाई को भाई का, होगा जी भाल खुदा की खुदाई का। कुछ आएगा वहां नजरो माल काम में, आएंगे सिर्फ अपने ही आमाल काम। आंखों से समर पर्दे हटाए हैं नबी ने, आसार कयामत ये बताए हैं नबी ने।
1: रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली।
2: आजा दिल का है मजमून कुछ लिखूं मोहम्मद का,
3: और ख्याले फिक्र में ढलता है अब मजमून मोहम्मद का।
2: अलिफ अल्लाह का है या अलिफ अल्लाह का है या कदे मौजू मोहम्मद का। अरे मुश्किल

0: दरबार में मसनद नशी है या इबादत में,
1: शजर में बर्ग में है वो कमर में या के जिलवत में,
0: मदीने में है वो, मदीने में है वो, अर्शे बरी पर या

0: बड़ी मुश्किल है जीना और कुछ मुश्किल नहीं मरना, मजा तो जब है जीना और आबे इश्क में तिरना। शमा से पर जले, शमा से पर जले, लेकिन शमा पर शौक से गिरना।
1: शमा से पर जले लेकिन शमा पर शौक से गिरना।
0: तो

अगर अगर कुछ सोच रखते हो तो फिर इजहार हो जाओ, अगर है दागे उल्फत अंदली बेजार हो जाओ, पढ़ो और पेशवाई के लिए तैयार हो जाओ, संभल जाओ

यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हर जुमे के दिन आपके लिए हम पेश करते हैं 9 से लेकर 9:30 बजे तक मरहूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं, आपके खिदमत में पेश करते हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवालीज आपके लिए हर जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और ये है रेडियो 79.1 प्रिस्पी।

आज जुमा है, प्रोग्राम को हम यही छोड़ रहे हैं आपके साथ फिरोज खान। अगली बार तक के लिए हमारा प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।